एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय

0: जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोब्जे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

मनुष्य क्रोध, नफरत, ईर्ष्या और द्वेष करता है। क्रोध, नफरत, ईर्ष्या जीवन में विष के समान है। यदि इन सभी का पान हम सब करते रहेंगे तो अहित भी

हमारा ही होता है। जिस प्रकार जहर को खा लेने पर वो स्वयं के लिए घातक होता है, उसी प्रकार से हमारी ईर्ष्या और द्वेष भी एक धीमा जहर है, हमारे आंतरिक विकार हैं। साधु, गुरु और शास्त्र की शरण ही वो संजीवनी बूटी है जो सदग्रंथ और सत्संग का आश्रय दिलाकर हमारे समस्त आंतरिक विकारों का समूल नाश करते हुए हमें सद्मार्ग की ओर निरंतर गति कराते हुए उस परम सत्य तक ले जाती है। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सिवाय प्रभु नाम के कोई कर्म नहीं है जो बंधनों से आजाद कर सके। अगर मुक्ति है तो प्रभु नाम में ही है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। प्रभु भजन अति सुखदाई है। प्रभु के भजन से मन शांत होता है और शांत मन में प्रभु का वास होता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है, हम अपने फर्जों को निभाते हुए भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं डिगा सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज विशेष के अलावा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य तिलक जन्म जयंती, आज की खबर और मौसम की जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। गीतों का कारवा ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 पर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। आज का विषय है रेडियो से जुड़ी आपकी यादें। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवा आप सुनेंगे सुबह 10:00 10:30 पर। हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम होगा पहाड़ों के सुर। महक पंजाब दी पंजाबी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे 11:05 पर। 11:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सैनिकों के लिए। ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:00। 12:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी में आज सुनिए स्थानीय बोली में मिंजरा। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5:10 पर सुनिएगा भजन। 5:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच। आज सुनिए रोजगार समाचार और विज्ञान जगत से जुड़ी बातें। सुरमई सांझ ये कार्यक्रम होगा शाम 6:06 पर। शाम 6:30 पर मौजा गराएं दिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर जानकारी साझा की जाएगी। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। देश गान आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए अभिनेता

0: अभिनेत्री कियारा अडवाणी द्वारा अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत रंगे गजल। ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे मॉनसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा के प्रश्नकाल की कार्यवाही आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रातः 9:20 पर, सुबह 11 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या 9 बजे News@9 रिले की जाएगी। ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्। राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमंत्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत लक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्रामविकासस्य, कृषेः, समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्ध क्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन् उपवेशने मन्त्रिमण्डल सचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनप्रकरणे सार्थक चर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थक चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीयदिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा, राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय मंत्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति, अथ अस्मिन् विषये गंभीर विमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति, यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
2: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभयदेशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता।

0: उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतंत्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-अधिक-19-शततमे वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-अधिक-19-शततमे वर्षे जून मासस्य 8 दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयम् दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात

0: के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडबरू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। President of North Macedonia, Gordana Silvanoska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. Prime Minister made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Vikasit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence at 7 Lok Kalyan Marg focused on strengthening governance, improving interministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the neat paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: द यूनियन मिनिस्टर सेड दैट एनडीए गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टेकन अप दिस मैटर वेरी सीरियसली। He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. The centre has approved two electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwani Vaishnaw, in a written reply in the Lok Sabha yesterday. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Canadian counterpart, Anita Anand, on the sidelines of

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज आपके साथ मैं हूं संगीता। कार्यक्रम का आगाज सुविचार के साथ। हेनरी फोर्ड ने कहा था, सफलता का रहस्य ये जानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जी हाँ श्रोताओं, हर नई सुबह आपके जीवन में नए अवसर और अनंत संभावनाएं लेकर आती है। बीते कल की असफलताओं को पीछे छोड़कर आज एक नई शुरुआत करें, क्योंकि आपकी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आपका हर कदम आपको अपने सपनों के और करीब ले जाएगा।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई का दिन भारतीय और विश्व के इतिहास में बेहद खास है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज विशेष पर। अमेरिका के आविष्कारक विलियम ऑस्टिन बर्ट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट करवाया था, जिसने टाइपराइटर की नींव रखी थी। 1920 में आज ही के दिन ब्रिटेन के कब्जे वाले पूर्वी अफ्रीका का नामकरण केन्या किया गया था और इसे ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया था। जिन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लक्ष्मण प्रसाद दुबे का निधन 1993 में आज ही के दिन हुआ था। 2012 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों के कॉमेडी बादशाह कहे जाने वाले अभिनेता और फिल्म निर्देशक महमूद अली का निधन भी आज ही के दिन 2004 में हुआ था। कॉमेडी के बादशाह थे महमूद साहब। ऐसे कलाकार जब सिनेमा के पर्दे पर आते थे तो दुखी मन भी खुश हो जाता था। हर अदा और हाव भाव से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले महमूद अली की आज पुण्यतिथि है। 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित ये महान कलाकार 23 जुलाई 2004 को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए, लेकिन अपने अभिनय और फिल्मों के जरिए वो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। सुनते हैं एक गीत लव इन टोक्यो फिल्म का, जो उन पर फिल्माया गया है।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
0: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: सुबह सुहानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, जिन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए उनके बारे में भी आपसे जानकारी साझा करते हैं। 23 जुलाई वर्ष 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में हुआ था। आज़ाद महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। चंद्रशेखर आज़ाद के सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। 27 फरवरी 1931 में आज़ाद ने 5 अंग्रेज पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने आप को भी गोली मार ली। आज़ाद ने प्रण लिया था कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी भारतीय नेता थे और जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनका जन्म 1956 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्म शती आज पूरा देश मना रहा है। स्वराज में

मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये उनका प्रसिद्ध नारा था और इसी नारे ने भारतवासियों के मन में स्वराज्य की भावना को और गहराई से जगाया था। उन्होंने जीवन भर ये माना कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही स्वतंत्रता का सही मार्ग है। स्वराज्य के शंखनादकर्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, देश में आज एफएम और निजी चैनलों की भरमार है, लेकिन एक वक्त था जब समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो और दूरदर्शन ही हुआ करते थे। आकाशवाणी की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1927

में हुई थी। उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत बम्बई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से की गई थी। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी नाम दिया गया और इसे प्रसार भारती के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। आज ही के दिन मुंबई से रेडियो सेवा का नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

सुबह सुहानी ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब आज की खबर पर नजर। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी मिल गई है। दवा से जुड़ी पूरी खबर स्वास्थ्य रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। ये वैक्सीन जापानी कंपनी द्वारा तैयार की गई है और इसे भारतीय दवा नियामक DCGI द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। हिमाचल पुलिस भर्ती में

सीमा में एक वर्ष की छूट। अधिकतम उम्र 25 से बढ़ाकर 26 साल की गई। हिमाचल कैबिनेट ने 7,500 पद भरने की मंजूरी दी है। आशा वर्कर और पीजी कर रहे डॉक्टरों की सैलरी बढ़ी। हिमाचल इन सर्विस अध्यापकों को 2028 तक टेट पास करना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की टहलीवाल जलापूर्ति योजना बनेगी हेरिटेज म्यूजियम। 1949 में स्थापित पंप हाउस और विंटेज मशीनरी का होगा पुनर्संरक्षण। इंग्लैंड से आई थी मशीनें। हिमाचल प्रदेश में एक जिला तीन उत्पाद योजना को लगेंगे पंख। 12 जिलों के 36 उत्पादों का चयन। अक्टूबर में लगेगी भव्य प्रदर्शनी, साथ ही होंगी बायर सेलर निवेशक मीट। KV सब स्टेशन जयसिंहपुर के निरीक्षण के कारण 23 जुलाई को जयसिंहपुर विद्युत उपमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल जयसिंहपुर के सहायक अभियंता तुलसी राम ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। पठानकोट जोगिंदर नगर रेल सेवा बारिश से प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द। जिले में हो रही भारी बारिश के बीच सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने लिया फैसला। इस दौरान कई ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। यात्रियों को सफर से पूर्व 139 या NTES पर ट्रेन स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। और आज हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश का येलो अलर्ट घोषित किया है। किसी भी आपात स्थिति में राज्य की हेल्पलाइन नंबर 1070 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये थी आज की खबरें।

0: इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। कार्यक्रम का आगाज विनय अबरोल द्वारा गाए हुए इस शिव भजन के साथ है।

0: शुभ प्रयाग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। इस रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा डायलिसिस, जीवन की नई डोर। इस विषय से संबंधित अपने जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश ठाकुर से आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। तो फोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
0: कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत सुनिए जिसे गाया है रामलाल तूली ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले की जाएगी।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
6: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से

0: इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय ना हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।

0: जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
2: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
3: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का गाने सुहाने कार्यक्रम केंद्रित है कॉमेडी के बादशाह महमूद सूरी पर।

कुंवारा बाप फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। राजेश रोशन का संगीत था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थी। गाने सुहाने कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं महमूद अली द्वारा अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत। गुमनाम फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, शंकर जय किशन का संगीत है, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ। और

0: ये 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरीज घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मुकेश का गाया ससुराल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं। इस रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा डायलिसिस, जीवन की नई डोर। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश ठाकुर से आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लें। रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। तो फोन करना ना भूलें रविवार दिनांक 26 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नए झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नागरिक।
6: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
7: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
8: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
9: स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेक्सा, अपग्रेड विद एक्सक्लूसिव ऑफर्स अक्रॉस द नेक्सा रेंज।
10: दिस मॉनसून सीजन मेक एवरी ड्राइव फील स्मूदर एंड एवरी जर्नी स्पेशल।
9: प्रेजेंटिंग द बोल्ड बलेनो, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी।
10: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display, and a safety through 6 airbags.
9: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
10: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कॉमेडी के बादशाह थे महमूद अली। ऐसे कलाकार जब सिनेमा के पर्दे पर आते थे तो दुखी मन भी खुश हो जाता था। 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित ये महान कलाकार 23 जुलाई 2004 को इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन अपने अभिनय और फिल्मों के जरिए वे आज भी हम सबके दिलों में जीवित

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला
1: एक चतुर ना।

0: ठगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना। अब राज लुटे या ताज लुटे, जब लागे तो से नैना।
1: रामा दुश्मन है।

मोहम्मद रफ़ी, महमूद और साथियों के गाए पत्थर के सनम फिल्म के इसी गीत के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज का कार्यक्रम केंद्रित था महमूद अली के नाम।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब पेश है सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। नमस्कार श्रोताओं, रिमझिम फुहारों के बीच मैं हूं आज आपकी रेडियो दोस्त संगीता और आप सुन रहे हैं FM धर्मशाला। श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही खास है। आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। जी हाँ, वही रेडियो जो कभी हमारी दादी नानी के घर की रौनक हुआ करता था, वही रेडियो जो आज भी हमारी गाड़ियों, मोबाइल और रास्तों का सबसे सच्चा साथी है। तो आज का पूरा एक घंटा यानी 9 बजे से 10 बजे तक ये समर्पित है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर, उस जादुई डिब्बे को जिसने हमें बिना देखे अपनों जैसी मोहब्बत दी। आज हम और आप मिलकर मनाएंगे रेडियो का जश्न, वो भी लाइव। और आज के लाइव फोन इन प्रोग्राम में हम जानना चाहते हैं आपके दिल की बात। रेडियो से जुड़ा आपका कोई किस्सा, या यूं कह ले कि रेडियो से जुड़ी आपकी यादें। जी हाँ, इसी पर ढेर सारी बातें, यादें, वो बीते पल हम मिलकर साझा करेंगे। टेलीफोन नंबर है 01892224391। और हमारा ये कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए, हमसे जुड़िए और अपनी यादें हमारे साथ साझा कीजिए। और आज का सफ़र हम शुरू करते हैं ढोल नगाड़ों के साथ और फिर लेंगे हम लाइव कॉल।

0: जी हाँ, आज हम मना रहे हैं रेडियो प्रसारण दिवस। लेते हैं प्रोग्राम की पहली कॉल। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दीजिए।
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी, तो रेडियो से जुड़ी आपकी यादें हम जानना चाहेंगे, कौन सी है वो याद जो आपको अभी भी आ जाती है?
1: जी, हमारा तो रेडियो और हमारा सफर काफी पुराना है
0: जी।
1: महज 10 साल की उम्र से हम रेडियो से जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: और लगातार देश भर के 180 रेडियो स्टेशन से अब तक जुड़ चुके हैं
0: जी। बहुत बढ़िया, बहुत दीवाने हैं आप रेडियो के। जी
1: जी, क्योंकि रेडियो बचपन से ही, और हम 90 वाले हैं तो उस समय तो ये सब मोबाइल, इंटरनेट, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ये सब था नहीं, तो उस समय रेडियो और सुनना, खास तौर पे क्रिकेट कमेंट्री, वो काफी मजेदार होता था
0: जी। बहुत बढ़िया, आपने हमें भी अपने पुराने दिनों की याद दिला दी।
1: और 2-3 बार तो हमारा आकाशवाणी में, मतलब रचना भी प्रस्तुत हुआ है आकाशवाणी रायपुर में, 1-2 बार आकाशवाणी हिसार वगैरह में इंटरव्यू भी गया है, तो छोटी छोटी बहुत सारी यादें हैं रेडियो से जुड़ी हुई
0: जी। बहुत बढ़िया, और देखिए आज के दिन आप अपनी यादें साझा कर रहे हैं तो पुराने दिनों में आप पहुंच गए, और कितना
1: और
0: अच्छा लगता होगा जब आप
1: जी,
0: अपनी रचना वहाँ पे प्रस्तुत करते थे और फिर घर आके आप रेडियो पर उसे सुनते थे।
1: और सबसे बड़ी याद तो इसी अभी 2025 में मिला, जब एक छोटा सा रेडियो का शौक भी हमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में अहम भूमिका निभा गया।
0: जी बहुत बहुत मुबारकें आपको फिर तो।
1: जी
0: जी, बहुत बढ़िया है, और ऐसे ही आप रेडियो से जुड़े रहें। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: आप भी इनकी तरह अपनी यादें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रेडियो से जुड़ा हुआ कोई भी किस्सा आप हमारे साथ आज के दिन साझा कर सकते हैं, क्योंकि आज है रेडियो प्रसारण दिवस। अगली कॉल लेते हैं। हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना परिचय दीजिए।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी थैंक यू सो मच। मैं अपनी रेडियो की यादें बताता हूँ आपको।
0: जी बिल्कुल
2: जी। 2005 से मैं रेडियो सुन रहा हूँ। इसका कारण ये हुआ कि मैं उस समय पे स्कूल जा रहा था, 10वीं 11वीं कक्षा में हूँ था उस समय
0: जी।
2: तो हमारे यहाँ पर एक स्कूल के पास में एक आंटी जी के यहाँ रेडियो चलता था, तो वहाँ पर हमें

0: हुनर को निकाला एक भजन गायक के रूप में। मैं फिर अपने
1: जी
0: 2019 से 2026 तक मैंने उसमें उस क्षेत्र में गया मैं
1: जी
0: तो। और उसके बाद में फिर 1 जनवरी 2026 से फिर मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ और मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुनता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया। और भजन आपने कहा कि बहुत अच्छे उम्दा भजन आप गाते हैं, तो
0: जी
1: कोई दो लाइनें अगर आप भजन की सुनाना चाहें तो साझा कर
0: जी
1: सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: मैं आपको बताऊं क्योंकि उस समय खाली समय था ना, कहीं
1: जी
0: आना जाना बंद कर दिया गया था लोगों का, घर पे
1: हाँ
0: ही
1: जी
0: रहना
1: हाँ
0: पड़
1: जी
0: रहा
1: जी
0: था।
1: जी
0: उसका समय का सदुपयोग करके मैं एक भजन गायक के रूप में फिर आगे आया।
1: जी बहुत अच्छा।
0: जी
1: देखिए कोरोना से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नुकसान भी हुए, पर कई सारे शौक जो है जो लोगों के अंदर थे वो भी उभर कर बाहर आए।
0: जी बिल्कुल।
1: जी तो
0: तो मैं एक लाइन सुना दूं आपको।
1: हाँ जी हाँ जी सुनाइए।
0: जी जय

0: जी
1: जी बहुत बढ़िया। और माता रानी आपकी जो कृपा है आप पर बनाई रखे, और आपने
0: दीदी
1: इस प्रोग्राम में कॉल किया और हमारे साथ अपनी यादें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ है।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है जयकरण जी।
1: देखो जी, आज रेडियो दिवस
0: प्रसारण दिवस है,
1: मनाया जा रहा है, जैसे कि रेडियो एक ऐसा साधन है जी हमारे काम में कभी ये बाधा नहीं था।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा, दूसरी बात ये कहूंगा सब, इसलिए इसका रंग आज तक जो फीका नहीं पड़ा,
0: बिल्कुल चढ़ता ही जा रहा है जी।
1: हाँ जी, और शुरू से आज सुबह से आपके माध्यम से सुन रहे हैं हम, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब कब इसके नाम बदले गए, बहुत अच्छा लग रहा था जी।
0: जी जी जी, पहले 1927 में इसकी स्थापना हुई।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी, हाँ जी, जी। और इस सेवा का नाम पहले भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था और बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया है।
1: अच्छा, जब जब मतलब ये पहली बार हमारे घर में रेडियो आया था ना, काफी टाइम की बात है, कम से कम 50 साल हो चुके हैं जी।
0: जी,
1: तब एक पहाड़ी गानों का प्रोग्राम आता था और सुनने में बहुत आनंद, रात 10:30 बजे शुरू होता था और 12 बजे तक चलता था
0: जी।
1: तो देखो जी, हम 12 बजे तक बैठे रहते।
0: बिल्कुल दीवानगी है ये रेडियो के प्रति आपकी, और आप हर प्रोग्राम में कॉल करते हैं ये भी हमें पता है।
1: जी जी जी, करते हैं
0: जी,
1: प्यार इतना है तो क्या करें आप।
0: हाँ बिल्कुल, प्यार बढ़ता रहे आपका रेडियो के साथ, ये हम दुआ करते हैं।
1: हमारा तो मतलब काम ही ऐसा है, बैठ के करने वाला, सिलाई का काम करता हूँ, वो
0: जी
1: मतलब
0: जी
1: पूरा दिन रेडियो जब वो चला रहता है और हमारे काम जो है वो बड़ी अच्छी तरह से चलता है
0: जी। बिल्कुल, हम ये पूछने वाले थे कि रेडियो के मतलब कब कब आप जुड़ते हैं, सुबह के समय, दोपहर के समय या शाम के समय, वैसे रेडियो टाइम आपका कब होता है?
1: पर वो गाना सुबह से लेकर शाम तक।
0: हाँ, मुझे प्यार करो। जी जी जी, तो
1: आजी, आजी, आजी।
0: ये प्यार आपका रेडियो की तरफ है।
1: हाँ जी
0: जी, जयकरण जी, आपने हमारे साथ अपनी यादें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम
0: जी। थैंक यू।

सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि के का बाकी का भाग हम लेकर आएंगे 9:30 पर, और 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, रिले की प्रतीक्षा करें, और उसके बाद हम लौटेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि के साथ है।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलते समय के अनुरूप शासन के स्वरूप को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, सरकार

0: संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने आज से 26 जुलाई तक कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरत के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। तेजी से बदलते शासन के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने बदलते समय के अनुरूप शासन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, इसमें हिमाचल भी शामिल है, वहां भी पेपर लीक की घटनाएं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर संवाद करने के लिए तैयार है। उन्होंने सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने का आग्रह किया।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी नीट अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे थे और यदि कोई स्थिति थी तो उसे बातचीत के माध्यम से भी सुलझाया जा सकता था। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण अधिकार है और विपक्ष का दायित्व है कि वह जनता के मुद्दों को उठाए। सरकार ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनकी से उठाए गए मुद्दों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है।
2: राहुल जी विपक्ष के नेता है, नीट के लोगों के समर्थन में आए, पेपर लीक हुआ उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी और विपक्ष के पूरे पार्टी के नेता है, तो जो भी राहुल गांधी जी मांग करते हैं, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के प्रमुख नेता है, उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है।
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनजागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @EIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले के 131

0: पोंग विस्थापित परिवारों के लिए लंबे इंतजार का दौर समाप्त हो गया है। करीब 5 दशकों से भूमि के मालकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे पात्र परिवारों को अब अपनी जमीन के भू प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। इसके साथ ही इन परिवारों के लिए स्थायी पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की नई राह खुल गई है। अधिक ब्यूरो के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: कांगड़ा जिले के 131 पोंग विस्थापित परिवारों के लिए लंबे इंतजार का दौर समाप्त हो गया है। करीब 5 दशकों से भूमि के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे अब अपनी जमीन के भू प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। इसके साथ ही इन परिवारों के लिए स्थायी पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की नई राह खुल गई है। अब इन परिवारों के लिए हिमाचली बोनाफाइड, अन्य राजस्व दस्तावेज, बैंक ऋण, कृषि सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। पात्र परिवार को पक्का घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। पोंग विस्थापित परिवारों का मानना है कि वर्षों के संघर्ष के बाद मिला यह अधिकार भविष्य की नई शुरुआत है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज भी मॉनसून की वर्षा का दौर रुक रुक कर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 26 जुलाई तक कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बीच बीच में बारिश होती रहेगी। उन्होंने लोगों को नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी है।
2: 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही जो ये मौसम सक्रिय रहेगा और बहुत से क्षेत्रों में बीच बीच में मतलब बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें अगर अलर्ट्स की बात करें तो केवल येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। उसमें अगर 23 जुलाई की बात करें तो जो हर क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है और शिमला मंडी है, कहाँ यहाँ पर एक दो स्थानों में ही हैवी रेनफॉल हो सकता है।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिमाचल में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू, शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। दैनिक जागरण लिखा है चिट्टे की मांग को भी खत्म करेगी सरकार। आउटसोर्स कर्मी की नौकरी पक्की नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने किया साफ। ठेकेदार बदलने पर छोड़नी ही पड़ेगी सेवाएं, दिव्य हिमाचल की खबर है। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है दिल्ली के हिमाचल निकेतन में छात्रों को मिलेगी आवासीय सुविधा। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 11 स्कूलों को राष्ट्रीय सम्मान, हर स्कूल को 1-1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, दैनिक भास्कर की एक खबर है। मौसम से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है गड़गून और भंगार गांव जमींदोज, सपेड़ा में खतरा बरकरार, खाली कराए तीनों गांव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलते समय के अनुरूप शासन के स्वरूप को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा सरकार संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक जारी, मौसम विभाग ने आज से 26 जुलाई तक कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क

0: करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। श्रोताओं, भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो के पहले आधिकारिक प्रसारण और दूर दराज के क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को याद करने के लिए समर्पित है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है रेडियो, और आज हम रेडियो प्रसारण दिवस मना रहे हैं। हेलो।
3: हेलो।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
3: हाँ जी, नमस्कार मैडम
2: जी। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौसम का हाल कैसा है वहाँ?
3: मैडम, मौसम अब काफी दिनों से जो गर्मी और उमस हो रही थी, अभी एक दो दिन से थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे मौसम ठंडा हुआ है। पर जो बारिश चाहते हैं, जिस प्रकार की धमाधम वाली, बिल्कुल जो, वो फास्ट बारिश नहीं हो रही है, मीडियम हो रही है
2: जी। चलिए, आ जाएगा मॉनसून उधर भी धीरे धीरे। और देखिए, आज हम बात कर रहे हैं रेडियो प्रसारण दिवस पर रेडियो से जुड़ी आपकी यादों के बारे में, जो आपकी पुरानी यादें हैं, कैसे आपने रेडियो सुनना शुरू किया।
3: हाँ जी मैडम, आज ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, और सबसे पहले आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जी, आप सभी श्रोताओं को भी शुभकामनाएं।
3: और मेरा रेडियो से रिश्ता मैडम करीब 40 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे। 1985 से मैं रेडियो सुनने लगा हूँ।
2: जी।
3: और रेडियो सुनने तो क्या लगा हूँ कि मतलब इस रेडियो से सुनते सुनते मुझे कब लगा हो गया, कब मैं इसका साथी बन गया, मुझे इतना मतलब मालूम नहीं है। पर मेरे पिताजी सुनते थे रेडियो
2: जी,
3: जो पुराने दौर में बड़े वाल वाले रेडियो होते थे ना घर में बड़े,
2: जी जी,
3: उसमें मेरे पिताजी सुनते थे। तो वो उस समय वो सुनते थे, तो मैं बचपन में छोटा था, करीब होगी उम्र 5-6-7 साल की
2: जी।
3: तो वो मुझे भी वैसे सुनने का शौक लग गया, पर आज 51-52 साल की उम्र है मेरी, पर रेडियो से जो मेरा रिश्ता एक बार जुड़ा है ना, वो निरंतर जारी है। और अब रेडियो का भी धीरे धीरे जो प्रसारण है, वो प्रसारण अब ये ऐप के माध्यम से भारत के हर कोने में, हर राज्यों में, देश विदेश तक में भी न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती मैप के माध्यम से सुनते हैं। तो इससे लगाव कम नहीं हुआ, लगाव और बढ़ गया। ऐसा लगता है हमारे परिवार का एक रिश्ता है, परिवार का साथी है।
2: जी बिल्कुल, जब रेडियो ना चले तो ऐसा लगता है सूनापन है, कुछ कोई रह गया है, कुछ अधूरा है।
3: बिल्कुल मैडम जी, ये मतलब सुबह से लेके शाम तक मेरे घर पे, यहाँ उज्जैन में रहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास में एफएम सेट चलता है, यहाँ लोकल भी चलता है उज्जैन आकाशवाणी, और उसको मैं ट्यून करना नहीं भूलता सुबह से, जब भी मतलब अच्छा लगता है, मतलब मन खुश रहता है।
2: जी बिल्कुल। और रेडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ, मनोरंजन और खबरें, समाचार, सब कुछ मिल जाता है।
3: हाँ, सभी कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं, और खास करके जैसे कि जो रोजगार समाचार होती, सब तो बात ही है, आज का देश में क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके छोटे छोटे कार्यक्रम जो युवा नहीं आता है, उसमें ट्रिप्स भी मिल जाते हैं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे इधर से भी युवा मंच कार्यक्रम चलता है शाम को 5:25 पर, उसमें भी ढेर सारी जानकारियां हम अपने युवा साथियों के लिए लेकर आते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम में किसानों के लिए बहुत सारी जानकारियां होती हैं, और देखिए सैनिकों को हम कैसे भूल सकते हैं, तो उनके लिए भी खास प्रोग्राम जो है हमारे रेडियो से चलता रहता है।
3: हाँ जी, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपके, और आपके यहाँ से एक प्रोग्राम आता है, ये गीतांजलि प्रोग्राम तो सुनता ही हूँ मैं
2: जी,
3: एक आता है आपके यहाँ से जनवाणी प्रोग्राम आता है शुक्रवार को 9 बजे सवेरे,
2: कल आप सुनेंगे इसे। हाँ जी,
3: वो भी अच्छा लगता है। पिछली बार आपने यहाँ जो इंटरनेट के क्या फायदे नुकसान है,

0: मिनट का वो प्रोग्राम रखा था, वो अच्छा लगा था मुझे
1: जी। तभी तो सारी जानकारियां हम साझा करते रहते हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो आरोग्यम कार्यक्रम भी हमारे आकाशवाणी धर्मशाला से हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हम प्रसारित करते हैं, ताकि हमारे श्रोता जो हैं स्वस्थ रहें। जी
0: बिल्कुल मैडम जी। और पुराना दौर जो रेडियो का था ना, जैसे वो सिबा का गीतमाला आता था प्रोग्राम, वो हमें ना करीब उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती थी, पर हम उसको दो रेडियो में एक साथ चला कर सुनते थे, क्योंकि कभी कभी किसी के रेडियो में फ्रीक्वेंसी कम आती थी, वो बिना का गीतमाला प्रोग्राम अच्छा लगता था। ऐसे मतलब 40 साल पुराने बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो रेडियो से जुड़े हुए हैं, पर बस अब डिजिटल भारत के अनुसार रेडियो के प्लेटफॉर्म भी चेंज हो चुके हैं, जैसे सोशल मीडिया पे
1: जी
0: फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
1: बिल्कुल सब जगह आप सुन सकते हैं रेडियो को। जी जी जी।
0: तो जैसे जैसे रेडियो प्रसारण का जो दायरा बढ़ा है, वैसे वैसे अब रेडियो भी अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने से श्रोताओं की पहुंच पे बिल्कुल पॉकेट में मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं। और अब दूसरा OTT प्लेटफॉर्म आ गया है वेब
1: जी,
0: उसमें भी काफी अच्छे
1: जी। इसका मतलब है आपकी आप रेडियो से बहुत सालों से जुड़े हैं और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि आप हमेशा रेडियो सुनते रहें और हमें कॉल करते रहें। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
4: हेलो संगीता जी, नमस्कार।
3: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
4: बहुत बढ़िया है जी, आज रेडियो दिवस स्थापना दिवस है
3: जी, तो धूमधाम से आप मना रहे हैं कि नहीं?
4: धूमधाम क्या करना जी, बारिश लगी हुई है
3: जी,
4: रेडियो चालू है, सुन रहे हैं।
3: हाँ, बस उसमें जो गीत बज रहे हैं उसी से आप धूमधाम से मना लीजिए, इसीलिए हम अच्छे अच्छे गीत आपके लिए प्ले कर रहे हैं आज।
4: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रसारण करते हैं आप
3: जी।
4: देखिए, रेडियो तो जो था पहले होता था, वो नाव घुमानी, उसमें एक प्लेट होती थी शीशे की
3: जी,
4: उसमें नमनी होती थी
3: जी,
4: उसको घुमा घुमा के अपने सेट करना, फिर अगर सेट ना हो तो एंटीना लगाना, फिर उसके बाद बैंड वाले आ गए, फिर ट्रांजिस्टर आ गए, फिर तो अब तो मोबाइल ऐप पे भी चलती है और फोन पर भी रेडियो चलता है। अब FM चल रहा है तो बहुत साफ चलता है।
3: बिल्कुल जी,
4: तो टेक्निक ने जो है ना, टेक्निक ने बहुत तरक्की की है
3: जी,
4: कहाँ से कहाँ तक ले आया रेडियो को, और आकाशवाणी के भी जो क्रम है वो भी उसमें इतना बढ़िया सुधार हुआ है कि इतने इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं कि यहाँ पर आदमी की जानकारी और उनको ज्ञान मिलता है
3: जी। वही तो आकाशवाणी का जो ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक
3: जी,
4: हर वर्ग के स्त्री हो, किसान हो, राजनीति के हो, हर
3: क्षेत्र में रेडियो जो है आपके जिंदगी में खास भूमिका निभाता है जी। तो सबसे पहले आपने सुनना कैसे शुरू किया, किसी कोई घर में सुनता था तब, या फिर अपने आप ही?
4: नहीं, सबसे पहले 1961 की जो चाइना की लड़ाई लगी थी ना, 1962
3: जी,
4: तो हमारे गांव के लोग थे ना, वो रेडियो खास करके उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे।

0: मैं तो उस वक्त इतना होश में नहीं था
1: जी,
0: तो मैं सोचता था कि इतने लोग इकट्ठे हैं क्या सुनते हैं
1: जी।
0: फिर उसके बाद जब 65 की पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी ना
1: जी,
0: तो फिर मेरे को समझ आया ये तो खबरें सुनते हैं
1: जी जी जी।
0: तब से लेकर मेरे को इसका जो है लत लग गई, और फिर उसके बाद तो मैं रेडियो का लगातार श्रोता ही बन गया
1: जी। वो हमें पता लगता रहता है आप जो हर प्रोग्राम में कॉल करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है रेडियो के साथ आप साझा करते हैं। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखिए जी, जो भी मैं सीखा हूँ सब रेडियो की देन है, आप ही की देन है, आप ही से सीख करके मैं बोलता हूँ
1: जी। चलिए, रेडियो से हम सभी लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और जो हमारे श्रोता हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें, अपनी पुरानी बातें हमारे साथ साझा करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी, धन्यवाद संगीता जी।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर रेडियो से जुड़ी अपनी यादों के बारे में हमारे संग आप अपनी यादों को साझा कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01892224391।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
4: छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ दीदी।
3: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
4: जी। थैंक यू दीदी, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया, आप बताइए रेडियो से कैसे जुड़े हैं आप?
4: दीदी हमारा एक ग्रुप चलता है दीदी, हेलो फरमाई देखते रेडियो श्रोता ग्रुप, और हम लोग जॉब भी कर लेते हैं और जॉब के साथ साथ दीदी रेडियो से बहुत हमको ज्ञान मिलता है और सीख मिलती है और अनुभव भी मिलता है दीदी।
3: जो आप जॉब करते हैं उसके बीच में आप रेडियो सुनने के लिए कैसे समय निकालते हैं?
4: दीदी हमारा जॉब एक ऐसा जॉब है कि हमको खाली समय ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कि हम लाइन बंद चालू करते हैं और हम खाली रहते हैं, तो दीदी हम रेडियो से ही मनोरंजन करते रहते हैं।
3: किस तरह की लाइनें शुरू करते हैं आप?
4: दीदी मैं बिजली ऑफिस में हूँ, ऑपरेटिंग करता हूँ, लाइट बंद चालू का काम है मेरा।
3: अच्छा जी, अच्छा जी। तो बरसात के मौसम में जो बिजली की लाइनें खराब हो जाती है वो कैसे ठीक करते हैं आप लोग?
4: जी बिल्कुल दीदी, हम लोग यदि लाइन फॉल्ट हो जाती है दीदी तो फिर आगे से लाइट बंद करवा के 33 से दीदी और परमिट करवा के और काम करवाते हैं दीदी।
3: क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसा काम करना थोड़ा रिस्की होता है ना, इसलिए मैंने पूछा। जी
4: बिल्कुल दीदी, और सावधानी पूर्वक ही काम करवाते हैं दीदी, हाथ में दस्ताने पहन के और पैर में जूते पहन के ही काम करवाते हैं दीदी।
3: जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप रेडियो के लिए समय निकाल पाते हैं ये सुनकर भी हमें बहुत अच्छा लगा, और रेडियो से आपका प्यार यूं ही बढ़ता रहे। जी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू दीदी
3: जी। आप भी इनकी तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 01892224391 यह है टेलीफोन नंबर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉल लेते हैं। हेलो,

0: हेलो जी, इनसे बात नहीं हो पाई है। शायद ये फ़ोन करके भूल गए हैं कि हम भी यहाँ बैठे हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं। 01-892-224-391 ये है टेलीफोन नंबर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए, और रेडियो से जुड़े भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हेलो जी, कॉल कट गई है। चलिए हम इंतज़ार करेंगे कॉल का, और आखिरी कॉलर ही होंगे जिनसे हम बात कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, प्रोग्राम खत्म होने ही वाला है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो। हाँ
0: नमस्कार
1: जी,
0: जी। हाँ जी, कौन बात कर
1: गुड
0: रहे
1: मॉर्निंग
0: हैं?
1: मैम।
0: गुड मॉर्निंग
1: हाँ, मैं पंकज बलोरिया बोल रहा हूँ जी।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैम, मैं रैत गाँव से बोल रहा हूँ।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप कार्यक्रम
1: धन्यवाद
0: के
1: मैम।
0: आखिरी कॉलर बने हैं
1: थैंक
0: जी।
1: यू मैम, सो नाइस
0: रेडियो
1: ऑफ यू।
0: से जी, इनके साथ संपर्क हमारा कट चुका है, तो आखिरी कॉलर तो ये नहीं बन पाएंगे। चलिए किसी और कॉल का हम इंतज़ार करते हैं। कॉल आ गई है। हेलो,
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी, रेडियो सेट को बंद कर लीजिए।
1: जी। हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी, दूर हो गए थोड़ा जी।
0: हाँ जी, दूर होके बात कीजिए जी।
1: मैं परसराम बोल रहा हूँ जी, मुकेरियां से,
0: जी
1: मानसर से। हाँ
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैडम,
0: कैसे जुड़े आप
1: मैं
0: रेडियो के साथ? जी बताइए।
1: ना 1971 जब इंडो पाक वार हुई थी ना, मेरे डैडी जी ने रेडियो ले खरीदा
0: जी
1: था।
0: हाँ जी,
1: उस समय मेरे को ना बहुत शौक पड़ गया है।
0: अच्छा
1: उससे लेकर आज तक मैं ना
0: जी,
1: FM ऑल इंडिया रेडियो, पहले तो 427 पर चलता था ऑल इंडिया रेडियो,
0: जी जी
1: 343 पे आकाशवाणी जलंधर चलता था,
0: जी
1: जम्मू
0: जी
1: चलता था, फिर
0: जी
1: 1600 पर विविध भारती चलता था। सारे
0: जी
1: कार्यक्रम सुनता था तो।
0: जी सारे रेडियो जो भी हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपने याद करके रखी है, और
1: हाँ बिल्कुल जी,
0: आकाशवाणी धर्मशाला की फ्रीक्वेंसी
1: 103.4,
0: जी, बहुत बढ़िया जी
1: 102.2 कठुआ चलता था, फिर बाद
0: जी
1: में धर्मशाला आ गया, फिर मैं ये सुनना शुरू कर दिया है।
0: जी
1: तो इवन मैडम भी मैं परसों आया बाटा कश्मीर से,
0: जी
1: वहां मैं ऐप के थ्रू सुनता था।
0: जी बहुत ही
1: हाँ
0: गहरी
1: धर्मशाला बहुत
0: मोहब्बत है
1: वधिया
0: आप, हो गई है आपको रेडियो से
1: चल। हाँ जी
0: जी
1: मैडम, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। मैं टीवी कम देखता हूँ लेकिन FM जरूर देखता हूँ। अनोखे लोग, अनोखी बातें, ये जो प्रोग्राम जब मैं लगाता हूँ, सारे मतलब नजदीक के लोग बातें सुनने के लिए आ जाते हैं
0: अच्छा जी
1: हमारे,
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: दुकान
0: जी
1: पे।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया, और रेडियो से आपका प्यार यूं ही बना रहे। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी।

इसी के साथ आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह, और अब मुझे यानी संगीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार, और रेडियो प्रसारण दिवस की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। 10 बजे हैं, हाजिर हैं हम लेकर कार्यक्रम गीतों का कारवां।

दोस्तों, मोबाइल की बैटरी दिन में कई बार चार्ज करनी पड़ती है, लेकिन दिल की बैटरी वो तो सिर्फ अच्छे लोगों, अच्छी यादों और अच्छे गीतों से ही चार्ज हो जाती है। तो अगर आपका मूड थोड़ा बैटरी लो दिखा रहा है तो बिल्कुल सही जुड़े हैं आप आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, क्योंकि यहाँ से हम आपके लिए लेके आते हैं प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से गीत, और हर अच्छा गीत दिल की बैटरी को बिना चार्जर के ही फुल कर देता है। तो ऐसे ही गीतों से लबरेज कार्यक्रम गीतों का कारवां लेकर हाजिर हैं और करते हैं अब इस म्यूजिकल प्रोग्राम में लॉगिन, और कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले हम सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। यूं ही हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए साजन फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतों का कारवां में हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और अब खुल चुकी है हमारी म्यूजिक होम स्क्रीन। यहाँ पर हर आइकन एक गीत है, बस जिस पर क्लिक कीजिए वही दिल की धड़कनों के साथ सिंक हो जाएगा।

0: हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
1: गीतों का कारवाई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है इसे। और अगला गीत श्रोताओं ऐसा है जिसे कभी डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े, शायद वो आपके दिल में ऑलरेडी डाउनलोड हो।

ज्वाला प्रसाद का गाया ये लोक भजन अभी आपने सुना। पहाड़ों के सुर कार्यक्रम की अगली पेशकश ये लोकगीत, जिसे गाया है बलबीर सिंह ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश ये लोकगीत। आवाज कमलजीत शर्मा की।

करनैल राणा का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। पहाड़ों की सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम की अंतिम पेशकश ये लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है लहरू राम सांख्यान ने।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को है, कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला की स्टूडियोज, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नेट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, इसमें हिमाचल भी शामिल है, वहां भी पेपर लीक की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का संवाद करने के लिए तैयार है। उन्होंने सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने का आग्रह किया।
2: गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी नीट अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे थे, यदि कोई स्थिति थी तो उसे

गीत के साथ विविध भारतीय सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी है। कांगड़ा जिले के 131 पौंग विस्थापित परिवारों के लिए लंबे इंतजार का दौर समाप्त हो गया है। करीब 5 दशकों से भूमि के मालकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे पात्र परिवारों को अब अपनी जमीन के भू प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। इसके साथ ही इन परिवार

0: जिला संवाददाता।
1: कांगड़ा जिले के 131 पोंग विस्थापित परिवारों के लिए लंबे इंतजार का दौर समाप्त हो गया है। करीब 5 दशकों से भूमि के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे अब अपनी जमीन के भू प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। इसके साथ ही इन परिवारों के लिए स्थायी पुनर्वास और सम्मानजनक

जदों मुस्कान बुलाते सजे तां दिल भी गुनगुनाउण लग जांदा है। इसे मुस्कुराहट नूं अगे वधाउंदा है अगला गीत।

0: कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: कांगड़ा जिले के 131 पोंग विस्थापित परिवारों के लिए लंबे इंतजार का दौर समाप्त हो गया है। करीब 5 दशकों से भूमि के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे अब अपने

0: महक पंजाब दी दा सफर जारी रहेगा इस कमर्शियल ब्रेक तो बाद।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
4: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
5: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: पंजाब दी रौनक सिर्फ मेलिया विच नहीं सगो इस दे गीता दी हर धुन विच वसदी है। इस सफर नूं अगे वधाइए।

0: आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
4: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
5: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
4: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till...
6: Nexa. इश्क दी राह च दिल दा खो जाना भी एक सोहना एहसास हुंदा है। चलो हुण सुनदे हां एक होर खूबसूरत नगमा।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ग्यारह बजकर 30 मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
0: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
1: जी,
0: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
1: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का, वो लिखते हैं।
0: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
1: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
1: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
0: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
1: जी।
0: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
1: जी।
0: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
1: जी।
0: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
0: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
1: जी,
0: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं, फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
1: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं, और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
0: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
1: जी।
0: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
1: जी।
0: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।

0: श्रोताओ, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उत्सव में लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज

0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
0: 8800-44-0559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक

0: टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
1: चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
0: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
1: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
2: जी महाराज, जी महाराज।
1: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
3: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि

0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
1: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे। अब स्वयं जाकर वहाँ

0: छूट।
1: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
2: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
0: चोट? वो
1: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन

0: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
1: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
2: मशकूब भाई।
3: जी जनाब।
2: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
3: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है। अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
2: लाओ। बस बस।
3: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
2: सही कहा मशकूब भाई।
3: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
2: अभी तक तो कुछ नहीं।
3: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
2: अरे नहीं नहीं
3: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए साथ में।

0: किताब किस लिए?
1: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
0: अच्छा,
1: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
0: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
1: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए,
0: तौबा तौबा तौबा,
1: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
0: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस नुस्खे के लिए।

0: बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
1: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया? क्या खूब रंग चमक।
0: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
1: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक,
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा।

0: जी, ऐसी ही कुछ मोहब्बत है हमारे सैनिक साथियों को अपने वतन से, अपने तिरंगे से। उनकी धड़कनों में देश बसता है, उनकी हर सांस में भारत माता का नाम होता है। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं, और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी भाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: जी, कार्यक्रम में सैनिक साथियों का एक बार फिर स्वागत, सभी श्रोताओं का भी कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत करते हैं। सैनिक साथियों, दिल का रिश्ता जब अपने देश के साथ आपका जुड़ गया है, तो आपकी हर सुबह जब शुरू होती है तो आपकी पहली सोच यही रहती है कि अपने देश के लिए हम ऐसा क्या कर जाएं कि हम हमेशा के लिए लोगों की याद में बस जाएं। सरहद की राह आसान नहीं, लेकिन वतन की मोहब्बत जो है वो इसको आसान बना देती है, और इसी रास्ते पर आगे आप

हैं, तो आपकी हर सुबह जब शुरू होती है तो आपकी पहली सोच यही रहती है कि अपने देश के लिए हम ऐसा क्या कर जाएं कि हम हमेशा के लिए लोगों की याद में बस जाएं। सरहद की राह आसान नहीं, लेकिन वतन की मोहब्बत जो है वो इसको आसान बना देती है, और इसी रास्ते पर आगे आप बढ़ते रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। आपके मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम में गीत सुनवा रहे हैं, एक और गीत आपके रेडियो सेट्स पर, रेडियो पर सुनिए, मोबाइल पर भी आप हमें सुन सकते हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड कीजिए और आकाशवाणी धर्मशाला

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: 103.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कुछ बातें लफ्जों से नहीं, एहसासों से समझी जाती हैं। जैसे एक सैनिक का अपने देश के लिए समर्पण, जिसे ना तोलने का कोई पैमाना है ना बयान करने के लिए कोई शब्द। सैनिक साथियों, लीजिए अब सुनिए ताल फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, सुखविंदर सिंह और साथियों का गाया।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में हम सैनिक भाइयों को प्यारे प्यारे से गीत सुनवा रहे हैं और सैनिक साथियों ने जो वादा किया है अपने देश से, अपने देश की सुरक्षा का, वो उसे कभी भी नहीं भूलते हैं। सरहद पर खड़े ये कदम सिर्फ जमीन की नहीं, करोड़ों उम्मीदों की हिफाजत करते हैं। यही वजह है कि हर देशवासी का दिल दुआ करता है, उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम करता है और उनके लिए कुछ सुकून के पल लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगला गीत सैनिक साथियों के लिए ये रहा।

उम्मीद है गीतों का यह सिलसिला सैनिक साथियों आपके लिए कुछ पलों की मुस्कान और अपनों की यादों की गर्माहट लेकर आया होगा। दुआ है आपकी हर सुबह विश्वास से भरी हो, हर शाम सुकून लेकर आए और हर कदम देश का गौरव बढ़ाए। फिर मिलेंगे एक नए गीत संगीत के सफर में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे सैनिकों के लिए कार्यक्रम। दोपहर के 12:30 हुए हैं और आकाशवाणी धर्मशाला से अब वक्त है प्यारी बहनों के कार्यक्रम मिंजरा का। दिल्ली जी सुनिए कार्यक्रम।

मिंजरा कार्यक्रम सुनने वाली भैन जो नमस्ते कने सारे जो राम राम। मैं मौसम बरसाती का चलिया कने इस मौसम च बड़ी सारिया गलों का ध्यान जड़ा सा रखना पौंदा सारे जो अखे वखे घा जड़ा सा बड़ा नहीं होना देना है कई कि भी एक तो मच्छर कने कीड़े मकोड़े बधी आते हैं कने सरपा बिछुआ का भी जड़ा सा डर बनया रहा। साफ सफाई आले दुआले जरूर रखना चाहिए घरे ते बाहर खाली डब्बे बर्तन टायरां दे जड़े असं घरें टायर रखे होंगे कने तिस बीच भी जो अगर पानी भरी आता है तो तिसते भी मच्छर फैलने का जड़ा सा खतरा रहा कने डेंगू बुखार भी अजकल तो दिखा दे कि लगी पवा करते हैं। पानी जड़ा सा हल्का उबाली लेना चाहिए अगर पानी सोर्स से गंदा हुआ करता है या धुंधला हुआ करता है कने खाना जड़ा है ना भैनों से अजकल ताज़ा ही खाना चाहिए कहो कि भी इस मौसम च पाचन शक्ति जड़ी इसे कमजोर रहती कने संझा दी बेला दरवाजे खुले नहीं रखने मच्छर अंदर आने का यही समय होता है कने जिहड़ियां भैणा पशुओं वास्ते घा बढ़ना चाहदियां से भी ध्यान कुछ गल्लां दा देन कि भी पत्ते या डालू जड़े से इलाज उलाज लेना चाहिए कने जिथू कुथी ढाका पर घा होए से नहीं बढ़ना कहे कि भाई जी मिट्टी है ना भैनों से जड़ी से उसरी मिट्टी होंगी है कने कई हादसे जड़े से हो जाते हैं तो भैनों घर से कम तो भाई करना ही पौंदे हैं पर कुछ गल्लां दा ध्यान रखना बड़ा जरूरी होंदा है ताकि कोई भरिया बरसाती नुकसान ना हो जाए। इस बरसाती का आनंद भी लैना है कने बरखा च नोए नोए पकवान भी बनाने जेड़े असा पूरा साल जेड़े सा नहीं बनाई पाते हैं ये गल्लां थियां इस मौसम दियां। तो भैनों अज के मौसम च महिला का जड़ा सा आत्मनिर्भर होना बड़ा जरूरी है बल्कि समाज जड़ा विकास होंदा है तो इसका आधार भी यही है। हर महिला के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होंदा जरूरत होंगी इस हुनर जो पहचानने दी उस जो निखारने दी तीस जो सही दिशा देने दी ताई तो सह आर्थिक रूप से मजबूत बनी सकती है। महिलाएं जड़ी है सह सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर खाना बनाना पेंटिंग करना हस्तशिल्प कंप्यूटर डिजिटल मार्केटिंग कुछ कोई भी चाहे तीसियों लगे कि भी कोई भी क्षेत्र हो है तिस विच प्रशिक्षण से ले सकती है ट्रेनिंग ले सकती है अपने हुनर जो निखारी सकती है। आज जमाना है बनो इंटरनेट कन ऑनलाइन दा इस दे माध्यम ते से अपने उत्पाद अपने प्रोडक्ट जो लोका तक घर द्वार पहुँचा सकती है कने पैसा कमाई सकती है। तो बनो गल्ला होर भी जेड़ी से असा करनी है ना पर इस दे पहले असा सुनाना प्यार दिया लोक गीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: लोकगीत ते बाद कने विज्ञापन ते बाद कार्यक्रम मिंजरा च एक बारी आसा फिरी हाजिर हैं। कने इस ते पहले गल हुआ करती थी अपने हुनर जो पहचानने दी। मैनों आत्मनिर्भर बनने वास्ते आत्मविश्वास होना बड़ा जरूरी है। अपने पर विश्वास होना चाहिए

भी असा एक काम बढ़िया तरीके कने करी सकन। लगातार सीखने की भी जरूरत आती है, कने मेहनत तो जरूरी है ही। अज सरकार कई संस्थान के जरिए महिला जो कई प्रशिक्षण दिया करते हैं, स्वयं रोजगार योजनाएं चला करते हैं, ऋण की सुविधा भी मिला करती है, जिसका फायदा असा ले सकते हैं। छोटा या बड़ा व्यवसाय असा शुरू कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी एक महिला अपने हुनर जो पछाण ही लेंदी है, तिस जो शुरू कर दी है, तिसते सह आर्थिक रूप से मजबूत होंदी है, बल्कि अपने परिवार कने समाज के विकास च भी महत्वपूर्ण योगदान दिंदी है। मैं इसलिए हर महिला जो अपने जेड़े सपने हैं से जरूर पूरा करने चाहिए, अपने कौशल जो निखारना, तीस जो सही दिशा देना जरूरी होंदा है। तो बहनों आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला अज ज़्यादा खुशहाल है, परिवार की जिम्मेदारी दे करने से अपने आय भी जेड़े से कमाई लिया कर दी है। पैसा कमाना या बचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तीस जो निवेश करना या सही जगह लाना भी जरूरी है, ताकि सही समय पर से अपन कमी आ सके। जल्दी ऐसे जो जरूरत हो, चाहे सह तीस की शुरुआत 100 रुपये तो कहे न हो, बहन जियाँ जियाँ आमदनी बढ़ती जाती है, निवेश करने की राशि भी बढ़ना लगी पौंदी है। तो बहनों छोटी छोटी समस्या तो जिंदगी आदियाँ रहदियाँ, इसका समाधान आपू ही तोपना पौंदा है। कोई भी काम की शुरुआत जल्दी असा करते हैं तो शुरू च इतना फायदा नहीं होंदा है, धीरे धीरे जेड़े से मार्केट असं बनाना पौंदी है, लोगों तक से गल पुजाना पौंदी है, ता ही फायदा असंजो होंदा है। असं सोचते हैं कि भी अज काम चलिया कने कल ही फायदा मिलना शुरू हो जाए, तो यह जरूरी नहीं है। समय तो लगता ही है, कोई काम जल्दी असा चलाते हैं तो बहनों अपना काम तो अपना होंगे, अपना कमे दे असा आपू ही मालिक होंगे, जल्दी मर्जी काम कर लीए, कोई बंदिश नहीं होंगी। कने अपने कमे दे फायदे तो बहनों तुम्हें पता ही है कि बड़े सारे होंगे। बहनों ऐसा नहीं है कि भाई महिला जो पैसे संबंधी मामले की समझ नहीं है, ये गलत असा सब जानते हैं कि घरे का बजट बनाने कने घरे जो सही तरीके कने चलाने की तिना बिच कला है, तिस तो सूझबूझ कने सह घट पैसों से भी पूरे महीने का खर्च जेड़ा सह चलाई सकती है। ये काम बड़े घट आदमी लोग करते हैं। आम तौर पर देखा जाए तो घरे का बजट बहन ही बना दी, घरे के खर्चे करने के बाद से बचत करी ने सही जगह निवेश भी करा कर दी, पर निवेश करने के बाद भी सह आत्मनिर्भर नहीं बनी पा कर दी, ये गल सोचने वाली है, जरूरत है इसकी। इतनी मेहनत, इतनी

मामलें की समझनी है। ये गल तो असा तुसा सब जानते हैं कि घरे का बजट बनाने कन्ने घरे जो सही तरीके कन्ने चलाने की तिना बिच कला है। तिस तो सूझबूझ कन्ने सह घट पैसों च भी पूरे महीने का खर्च जड़ सह चलाई सकती है। ये कम बड़े घट शुरू करते हैं तो जड़िया बैणा उन्हां कम्मां च माहिर न तिना ते राय जरूर लैनी चाहिए। अपने पैसों का प्रबंधन आपू करना सीखना चाहिए। अपना बैंक खाता खुद अपडेट करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होनी चाहिए। कहने बचत करने की छोटी छोटी आदत भी जरूर होए ताकि कुछ ही पैसा असं जमा करी सकन। अगर असं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बिना गारंटी वाला जिहड़ा लोन आंदा है कन्ने सबसिडी देने वाली सरकारी योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। तो बहनों असा स्वयं सहायता समूह कन्ने जुड़ी ने अपने व्यवसाय अपने विचार मजबूत नैटवर्क पर कमे की शुरुआत करी सकते हैं। कई कि ये जेडे समूह होंगे ना बहनों तिन्हें जो वधिया लोन सुविधा होंगी है घट ब्याज दर पर लोन मिली आता है। तो बहनों कार्यक्रम च हूँ एक होर लोक गीत सुनाना है तो सुना लोक गीत।

0: Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom. Maruti Suzuki Celerio. Smart choice. Smart drive. Mileage figure as per certified test conditions. TNC apply.
1: लोकगीत कने विज्ञापन ते बाद कार्यक्रम च असा एक बारी फिरी हाजिर हैं। इससे पहले गल हुआ कर दी थी अपने वेबसाइट

ले लिया। कहने 8 जून 1936 इस जो औपचारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो का जो सा नाम दिता। उसके बाद 1956 राष्ट्रीय प्रसारण अधिकारिक नाम जड़ा सा आकाश

एक साफ डिब्बे च असें पाई रखना। फिर दो कप शीरा लैना, एक कप देसी घी लैना, चीनी लैनी एक कप, कन्नै पानी लैने दो कप, इलायची पाउडर लैना, साबुत सोए लैने, कन्नै काजू बदाम तुसें पाई सकदे न, जरूरी भी नहीं है लेकिन काजू बदाम तुसें पाई सकदे न, जरूरी भी नहीं है लेकिन अगर स्वाद बधाना चाहते तो यह भी पाई सकते। पहले बैठो इक्की खुले बर्तन से भिगोई देने, कन्नै इस बिच चीनी इलायची सोए काजू बदाम जोड़े से सेड़ी देने, कन्नै एक कढ़ाई च घी गर्म करना, फिर जेड़ा शीरा है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र खुले समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: India has called for zero tolerance against terrorism and reaffirmed its commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific at the 33rd ASEAN Regional Forum ministerial meeting in Manila in the Philippines. Addressing the meeting, External Affairs Minister Don.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 1:10 हुए हैं अब आकाश।
2: कि वे बचपन में रेडियो पर लता जी और मन्ना डे के गाने सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी और रेडियो से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। पहले रेडियो ही मनोरंजन का साधन था और दूसरा विकल्प नहीं था, प्रायः सभी के घरों में दिखता था। और आज मोबाइल ऐप आ गया है लेकिन आज भी कार्यक्रमों को उसी अंदाज में सुना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा मुझे आपने शुभाशीष दिया, और लिखते हैं कि यथानाम तथागुण को सार्थक करने वाली आप, अपनी स्वर लहरियों के साथ जो सुंदर संगीत की गंगा बहेगी उसका आनंद ही अलग है। मंदाकिनी में डूबते उभरते कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलता, सभी श्रोताओं के विचार सुनना भी कर्णप्रिय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इतना स्नेह देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीत में सुरीला सफर में शामिल सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन का खास इंतजार है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नित नवनीत नवकल्पना नव रूप से सज्जित इबारत आज नई दिशा इंगित कर रही है। शैशव काल से उत्तरार्ध के सफर में बेतार वाणी आकाशवाणी का अवदान अतुलनीय है। सामयिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुकी आकाशवाणी आज तकनीकी तब्दीलियों में भी ताल से ताल मिलाकर चैतन्य ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। संगीत प्रसारण से हिंदी प्रसार उल्लेखनीय अवदान है। देश की एकता अखंडता अक्षुण रखने में आकाशवाणी आज भी घर घर में है और नव चैतन्यता ना जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा। नव चैतन्यता जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा, क्या बात है, आपने कितने सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी है, शुक्रिया मेहरबानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमंत कुमार का संगीत है और बंकिम चंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है आनंद मठ।

जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवाने श्रोताओं दोस्तों के लिए बहुत खुशी भरा दिन है। मेरे पापा रेडियो के बहुत शौकीन थे, घर में लंबे साइज वाला रेडियो जिसमें हरे रंग की लाइट वाला वॉल्व होता था, हम सभी परिवार वाले बड़े चाव से सुनना करते थे। 2001 में जालंधर रेडियो के FM स्टेशन पे फोन इन प्रोग्राम में मेरा बहुत बार फोन लगा। विविध भारती के हेलो फरमाइश में 4 बार अपनी फरमाइश फोन लगाकर पूरी कर चुका हूँ। तकरीबन अब 23 साल हो गए हैं विविध भारती पे फोन नहीं लगा, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित कालजई ठुमरी बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, ये ठुमरी जो अक्सर राग भैरवी में गाई जाती है, नवाब शाह द्वारा लखनऊ से निर्वासन के दौरान लिखी गई, जिसमें वे अपने शहर को दुल्हन की विदाई के रूपक के माध्यम से विदा कर रहे हैं। ये गीत केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसमें नैयर सांसारिक जीवन और पिया का देश आध्यात्मिक संसार का प्रतीक है। के एल सहगल की फिल्म स्ट्रीट सिंगर और अन्य दिग्गज कलाकारों द्वारा गाए जाने के कारण ये गीत आज भी प्रासंगिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही गहरा है। बहुत सुंदर, आपने उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब इस गीत को सुना जाता था और आज भी उतनी शिद्दत के साथ हमारे रेडियो प्रेमी इस गीत को सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि KL सहगल जी का ये गाना मेरे पिताश्री को बहुत पसंद था, सुबह 7 बजे खुलेगी सारे गीत प्रोग्राम अवश्य सुनते थे। ये गाना सुनकर मेरे पिताश्री की याद आ गई, अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, मेरे बचपन के दिन भी याद आ गए, जब ये गाना सुनता हूँ पुराने जमाने में खो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज खास राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन सुरीला सफर प्रोग्राम में आपने कार्यक्रम का आगाज महान गायक कुंदलाल सहगल जी से किया, ये बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं भी वो आखिर में KL सहगल का गीत बजने वाला प्रोग्राम जरूर सुना करती थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस आवाज को आज भी एक लोकप्रिय रेडियो पर कार्यक्रम के अंत में बजाया जाता है। और एक श्रोता का कहना है कि कुंदनलाल सहगल की आवाज में गाई गई सदाबहार ठुमरी मूल रूप से अवध के नवाब द्वारा रचित है, इसे राग भैरवी के सुरों में पिरोया गया और ये गीत आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी तो आज का ये सफर कितना संगीत में बनने वाला है ये तो हम सभी जानते हैं, और आज हम आपसे सिर्फ 2 सवाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों, आज पूरे सफर में हम आपसे बातचीत करेंगे, दुनिया भर के सवाल करेंगे और आप लगातार हमें जवाब देते रहेंगे, क्यों है ना, आज का सफर तो ऐसा ही होने वाला है भाई। तो चलिए आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र में रेडियो सुनना शुरू कर दिया था और क्या अब तक आप लगातार वो रेडियो सुन रहे हैं। और इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा गीत आपने रेडियो पर सुना अपने जीवन में।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवाने श्रोताओं के लिए बहुत खुशी भरा दिन है और आज का दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती है, रेडियो उन्हीं आवाज़ों का नाम है जो अनजान होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसीलिए उसके साथ बिताया हर पल एक मीठी याद बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट बहुत ही भावुक करने वाला है, मैं उत्सुक हूँ कि आज के शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो की भूमिका के बारे में जानने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही रेडियो सुन रहे हैं, जिसमें विविध भारती सेवा तो भारतीय संस्कृति और शुद्ध मनोरंजन का एक जीवंत प्रतीक है। आज के इंटरनेट और डिजिटल युग में भी विविध भारती अपनी सादगी, प्रामाणिकता और सुरीलेपन के कारण करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। भूले बिस्तरे गीत, सुरीला सफर, सखी सहेली और पिटारा जैसे कार्यक्रम मेरे सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर को हर घर तक पहुंचाने में आप सभी रेडियो उद्घोषकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने अपनी जादुई आवाज से न सिर्फ हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे परिवार को एक साथ बैठकर रेडियो सुनने की एक अनूठी और बेहद खूबसूरत संस्कृति भी दी है। आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये खास दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और सभी साथी उद्घोषक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लगातार आज इस सफर में हमारे साथ हैं और हमारे साथ है हमारा प्यारा साथी रेडियो। तो चलिए पुराना वो समय खंगालते हैं जब इस गीत को हम अक्सर सुना करते थे या हमारे माता पिता ने सुना होगा, हमारे दादा दादी ने सुना होगा। आपने भी सुना है कि नहीं बताइएगा मुझे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सलिल चौधरी की धुन।

जी, आपको कुछ याद रहा? बताइए, ये गाना आपने कभी सुना था? याद कीजिए, आपने, आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके घर के अन्य सदस्यों ने इस गीत को जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो बताइएगा। फिल्म प्रेम पत्र का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने कब सुना था और आपको ये गीत कैसा लगा था? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारतीय जनसंचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 23 जुलाई 1927 को जब मुंबई से पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर तरंगे एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाएगी। आजादी की लड़ाई में रेडियो केवल सूचना प्रसारित करने का साधन नहीं था, बल्कि वो क्रांति की गुप्त आवाज थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो ने देशवासियों पर काफी खबरें आगे तक पहुंचाई थी और हमें सच्ची खबरों के बारे में पता चला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में एक गीत जो अवश्य ही सुनाई देता है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल जी की आवाज में वो आज सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको वो गीत सुनने को मिल भी गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के बिना हमारा लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाना मैंने रेडियो पर ओल्ड इज गोल्ड सुना है। रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी और गायकों की आवाज में मैं गीत सुनता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जब से रेडियो की समझ आई, आप पूछ रही हैं कि हमने रेडियो कब से सुना है, जब से रेडियो की समझ आई तब से ही सुना जा रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं छोटा था, तब स्कूल से आकर तुरंत रेडियो ऑन करके गीत सुनता था, तब मुझे सुंजा आ ठंडी हवा। अच्छा, आपने सुंजा जी हाँ, वो है सुंजा आ ठंडी हवा, हाथी मेरे साथी का ये गीत आपको बहुत पसंद था। एक श्रोता लिखते हैं कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और रियल से, अच्छा, जो लगा रहता था एफएम ब्लूटूथ तक के, रेडियो के सफर का साक्षी होने पर हमें गर्व है। बेतार आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गीत हमें बेहद पसंद था रेडियो पर। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि आपने रेडियो में सबसे ज़्यादा किस गीत को सुना है और आपको कौन सा गीत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने होश संभाला तब से रेडियो सुनना शुरू कर दिया, पर तब सिर्फ गीत सुनते थे। शायद 12 या 13 साल की उम्र थी, वो भी पापा की कारण से, पापा की वजह से उन गीतों का बड़ा शौक था उन्हें, शायद वो हमारे पास लगा शौक और आज तक वो जिंदा है और सदा रहेगा। एक श्रोता कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बार रेडियो पर जो गीत सुना वो है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक श्रोता का कहना है कि मैंने 10 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया और अभी मैं 64 साल का हो गया हूँ। मेरी रुचि अनुरूप मेरे बच्चे बीवी का भी लगाव है, रेडियो का विकल्प हो ही नहीं सकता है। एक श्रोता कहते हैं कि 4 साल की उम्र से सुन रही हूं, रेडियो मेरे लिए मेरा हम सफर है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता कहते

1995 से, जब मेरे घर पर दो सेल वाली रेडियो थी और रात में हवा महल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर सुना करते थे, तब से रेडियो मेरा दोस्त है और आगे भी रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं रेडियो से और रेडियो ने हमारी हर उम्मीद पूरी भी की है। तो बताइएगा कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ के जो केंद्र सुनाई देते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए फ़ोन किया था, क्या आपने विविध भारती के लिए कभी फ़ोन किया या आपके जो लोकल स्टेशन लगते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश के लिए क्या आपने कभी कॉल किया? अगर कॉल किया तो किस उद्घोषक से आपकी बात हुई, क्या बात हुई, कौन सा गीत सुनना चाहा था आपने? याद कीजिए उन पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं। और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं? आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत जिसे सुनकर हम अक्सर कहते हैं ना कि खुश हो जाया करते थे या हम चहक उठते थे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज।
1: तो आपको याद आया कि ये गीत आपने कब गाया था? क्या किसी महफिल में आपने इस गाने को गाया था या आपके लिए किसी ने गाया था? याद कीजिए वो पल।

निगी के जब ऐसा कुछ घटित हुआ होगा और हमें लिख डालिए कि हाँ ये गीत मैंने किसी खास कार्यक्रम में गाया था। और हम गाते भी हैं अक्सर, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात कल्पनाएं होती हैं। कई बार कोई गीत हमें किसी खास इंसान के लिए पसंद आता है, कई बार कोई गीत हम अपने लिए पसंद करते हैं। कुछ घटनाएं हमें अंदर तक आह्लादित कर देती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ रेडियो के कार्यक्रम हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे, आपने सुने होंगे जयमाला में जब हम सैनिकों की बातें करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आकर जयमाला कार्यक्रम पेश करता है, तो आपको क्या लगा होगा, आपने क्या सोचा देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों के लिए? क्या कभी आपके मन में कोई विचार आया? रेडियो के जरिए क्या आपने अपनी बात कहने का कोई मौका ढूंढा? ये सभी बातें आज इस सफर में होने वाली हैं। आप अपना मन आज खोलकर रख दीजिए कि रेडियो की दुनिया आपके जीवन में क्या मायने रखती है। एक श्रोता लिखते हैं कि धन्यवाद, आज आपको बहुत बढ़िया इबारत और शब्दों को लिखकर आपने हमारे प्रश्न आसान कर दिए हैं। जी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, है ना? वही कोशिश हमारे साथ और आप भी कोशिश करते हैं। देखिए ना, आज पूरा आपकी ज़िंदगी में जो रेडियो की महत्ता है उस पर आपने अपनी बातें लिख डाली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है कि धुन से दिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सूचना, मनोरंजन और ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले सभी को, प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, आज भी हम भी ऐसा ही करते थे कि जब रेडियो की वो जो ST जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं बजने वाली होती थी, हम उठ जाते थे और वो धुन सुनना एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आपको उस धुन को सुनना कैसा लगा, आप उस धुन को सुनकर क्या सोचते हैं, उसके बाद वंदे मातरम का गान आता है, वो सब आपके लिए क्या मायने रखता है, ये सभी सुनने के बाद जीवन कैसा हुआ आपका, क्या अंतर आया जीवन में, ये सभी विचार आज आप रखने वाले हैं, है ना? आज सुरीला सफर में हम सभी ये बातें करने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पीढ़ी भले ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग ऐप्स की दीवानी हो, लेकिन जो जादू ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर घरघराहट के बीच से एक साफ आवाज ढूंढने में था, वो आज की क्लिक संस्कृति में कहा, क्या बात है, बहुत सुंदर। जब हम शॉर्ट वेव में गाना ढूंढा करते थे, मीडियम वेव में गाना ढूंढा करते थे, बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यारी यादें हमारे सामने साझा की हैं, रख दी हैं। आप लिखते हैं कि रेडियो भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक इंसानी जज्बात और आवाज का रिश्ता कायम है, रेडियो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर गूंजता रहेगा। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत का पहला मनभावन भाग कह रहा है कि लिख डालो वो सुरीले सुहाने सुनहरे भावभीने गीत जिन्हें सुनकर हम चकित होकर रुक जाते हैं। जी हाँ, मंदाकिनी जी के चुने हुए शब्द लेकर ज्यादा से ज्यादा गायकों का समावेश करके गीत चुन लेना, कहना मान तो लिया है, अब देखते हैं कितने नगमे सफल हो पाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सफल और असफल होने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम मिलजुल कर इस राह को आसान करने का है, जो आप कर भी देते हैं और आपने संदेश लिखा भी है बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और यकीनन यही गीत हमने भी चुने हैं, बहुत सारे गीत हमारे गीत से मिलते भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो की आवाज़ अपने पैर में गीतों के घुंघरू बांधकर कब मेरे मन पर बस गई, ये मैं जान ही न सकी। जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो क्या जानती थी कि ये आवाज़ एक सच्चे हमसफर की तरह दिन रात साथ बन जाएगी। आसमान से ऐसी ही सतरंगी आवाज़ें तरंगों पर सवार होकर जमीन पर उतरती हैं और साथ लाती हैं रूहानी मनोरंजन की सौगात। इन सुरीली धड़कनों ने जब हर घर में अपना वजूद कायम किया तो नाम मिला विविध भारती। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके बड़े से बड़े महल में सभी के लिए कुछ न कुछ अनमोल मोती के नगीने छिपे हैं। कौन सा नगीना कब आपके मन आत्मा पर जाकर जादू कर जाएगा, आप कह नहीं सकते। आज विविध भारती हम सभी की सांसों का हिस्सा है और अंतिम सांस तक बना रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुन रहा हूँ, अधिकतर रात में ही फटाफट होमवर्क करने के बाद सुनता था। अच्छा, बचपन में उन दिनों रेडियो पर रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता था। उन दिनों इस प्रोग्राम में कई उद्घोषक जो है अक्सर अपनी आवाज़ दिया करते थे और उनका अभिवादन करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता था। और आपने उद्घोषकों का नाम भी लिखा है कि उनकी जो प्रोग्राम शुरू करने की आदत है वो आपको बेहद अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कि फिर मैंने रेडियो का रिसर्च भी किया, कोरोना के समय घर पर रहना हुआ तो रेडियो का रिसर्च किया, फिर उन दिनों कई उद्घोषकों को मैंने सुना और उसके बाद उन उद्घोषकों को मैंने YouTube पर सर्च भी किया। क्या बात है आपकी उत्कंठा सर आंखों पर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसलिए बधाई और शुभकामनाएं तो देने का दिन बनता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका के संदर्भ में बयान करना हमारे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि हम उस दौर के नहीं हैं, लेकिन दादी नानी से कहते हुए बहुत कुछ सुना था कि चोरी छिपे रेडियो पर प्रसारण सुना जाता था। मेरे जीवन में रेडियो की भूमिका रही लेखन में स्पीड बढ़ाने
बनाने के लिए

समाचार और गानों को लिखकर अभ्यास किया गया उस दौर में जब सब हंसते थे लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी स्पीड लिखने में बहुत तेज थी वो आज भी है। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात लिख दी है कि रेडियो से आपने क्या सीखा है जो एक स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी होता है, यानी अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को साफ और सुथरा बनाना, साथ ही अपनी स्पीड तेज करना। बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी की धुन। ये गीत सुनने के बाद भी आपका मन क्या कल्पनाओं की उड़ान में अपने उड़ान भरता था, बताइएगा। कल्पनाओं की उड़ान कैसी होती थी आपके इस गीत को सुनने के बाद? हमें लगता है बहुत सुंदर गीत, जिसे सुनकर हमने बहुत कुछ कल्पनाएं की होंगी।

हमारे श्रोता का लिखना है कि रेडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। आज के द्वारा सुरीला सफ़र पेशकश का आनंद लिया जा रहा है और गीत भी कर्णप्रिय हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की रेडियो शुरू होने की धुन बहुत मोहक थी, अच्छा जो जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, संकेत ध्वनि, उसके बारे में आप लिखते हैं कि रेडियो पहले ही खोल कर रख लेती थी, पहले एक सीटी बजती थी और उसके बाद धुन बजना शुरू होती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आप तो आज सभी श्रोताओं को एकदम खुश कर दे रही हैं, सभी के कमेंट शामिल कर रही हैं।

आपको सैल्यूट है। आप सभी को भी सैल्यूट है कि आप भर भर कर अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर गीत सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए रेडियो बहुत खास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना सबसे पहले मैंने रेडियो में सुना था, उसके बाद ये गाना आज भी मुझे याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम रेडियो तब से सुन रहे हैं जब हमारे घर में रेडियो नहीं था और पॉकेट रेडियो खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ते थे। जब मेला आएगा तब उस मेले से जाकर रेडियो लेकर आता था और कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो क्योंकि घर के हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे, जिसने मैंने खुद ही सुधारा और बाद में बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के सुने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव यू जिंदगी डियर जिंदगी, ये गाना हमने रेडियो पर बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपका अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रारंभिक धुन रोमांचित कर देती थी, किंतु जब भी बिजली कड़कती थी बड़े लोग रेडियो बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि रेडियो जल जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूं और अभी मेरे घर में हर कमरे में छोटे बड़े लगभग 13 रेडियो हैं। बचपन में पिताजी ने फिलिप्स का रेडियो लिया था जिसे हम सब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रोग्राम सुनते थे और विविध भारती मेरा मनपसंद चैनल है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि सभी कार्यक्रम सुने जाएं और हम उन सभी कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंत तक सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी का यह आलम है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है और आकाशवाणी भोपाल के दर्शन कर चुका हूं। 1981 में 17 वर्ष की आयु में मैंने आकाशवाणी लखनऊ के दर्शन किए, वहाँ के तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक से मैंने मुलाकात की और आकाशवाणी लखनऊ में भी जाकर मैंने वहाँ के कई लोगों से मुलाकात की और उनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्या बताऊँ। आकाशवाणी लखनऊ को देखने का रोमांच आज भी मेरे दिमाग में जीवित है। कभी मौका मिला तो मैं मुंबई आऊँगा और विविध भारती देखूँगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पसंद करूँगा। जी तो सुरीला सफर में अब हम आ गए हैं इस सोपान पर कि जहां हम दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज हमारे प्रिय गायक मुकेश की और फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

बदल कर रास्ते पर आएगी, आज ठुकराती

0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इसका जितना हम लिखें उतना ही कम है। आज इस कार्यक्रम में हम रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहा है उससे सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 23 जुलाई को आज का दिन मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है, जब 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण किया था। इतिहास और सफरनामा पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से निजी कंपनी IBC द्वारा शुरुआत हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। विविध भारती साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई जो घर घर में लोकप्रिय बनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस युग में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है तब भी रेडियो की मिठास और उसकी आत्मीयता कहीं न कहीं गूंजी रही है। मैं रेडियो को केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती हूँ। ये वो साथी है जिसने बचपन से जवानी तक मेरे हर पड़ाव को संगीत में बनाया, ज्ञान से भरपूर किया और भावनाओं को शब्द दिए। वे दिन जब शाम होते ही घरों में रेडियो की आवाज गूंजती थी, BBC की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत और हवा महल की कहानियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये वो धागा था जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखा। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। रेडियो से कोई चेहरा नहीं दिखता लेकिन आवाजों की आत्मीयता रिश्तों जैसी है। समय कितना भी बदले रेडियो का जादू हमेशा जीवित रहेगा, धड़कता रहेगा उन दिलों में जो इसे सुनते नहीं महसूस करते हैं। क्या बातें, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का उत्सव मना रहा है बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शा रहा है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने, मनोरंजित करने और देश को एकजुट रखने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे कदम बढ़ा रहा है सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज पहले तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर हम ये काम करते थे। बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं, 1970 के बाद से क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आए और 1982 के बाद TV जब आया तो तब भी हम विश्वसनीय साधन रेडियो को ही माना करते थे उन समाचारों को सुनने का। जी तो आज बहुत सारे सवाल हम इस सफर में कर तो रहे हैं लेकिन सफर का वक्त भी तो खत्म होने वाला है, तो चलिए आपके विचार हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। अब सुन लेते हैं ये गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम 20 साल बाद, शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की ही धुन है। आपने इस गीत को बहुत बार गुनगुनाया होगा, याद करिए कब कब आपने रेडियो पर ये गीत सुना था और कब ये दिल आपके दिल की धड़कन बन गया ये गीत।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

जी जी डरिए मत, हम अभी कहीं नहीं गए हैं, देखिए लौट आए हैं फिर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफर में वक्त और है, थोड़ा और आगे हम चल सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। और इसे आप अपने रेडियो से रेडियो सेट पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप पर, जो कि न्यूज ऑन AIR ऐप है, उस पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा विविध भारती के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले रेडियो हमारे घर पे आया था। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त समाचार सुनने के लिए सभी लोग हमारे घर आया करते थे। वो अभी भी थोड़ा बहुत हमें याद है। खास मौके पर विशेष प्रसारण, आपदा संबंधी जानकारियां और मनोरंजक कार्यक्रम, सब कुछ उसके द्वारा मिलता था। बाकी के समय रेडियो बजता रहता था, तब पुराने गीत से हम बहुत कुछ सीखा करते थे। बहुत सारे गाने हमें आज भी कंठस्थ हैं। बड़े हुए तब पढ़ाई के वक्त भी छोटा रेडियो चुपके से रख लेते थे। मुझे याद है कि मुझे और दीदी डांट पड़ा करती थी कि हम रेडियो चालू करके सो जाते हैं, और फिर भी हम नहीं मानते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की शुरुआत बहुत ही सुरीली है, वर्षा ऋतु है और बरसात के गाने सुनने को मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भाई आज तो हम कुछ और ही बरसा रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और रेडियो का हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा में क्या योगदान है, इससे हम सभी परिचित हैं और रेडियो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। रेडियो की हर वक्त ये भूमिका सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। तो चलिए आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। अक्सर जब हम बहुत उदास निराश रहे जिंदगी में, तो इस गीत को हमने कई बार गुनगुनाया। SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम नया जमाना। याद कीजिए वो वक्त जब आप भी कहीं नाराज थे किसी से और आपने इस गीत को मन ही मन गुनगुनाया था या गाया भी होगा।

जी हाँ, देखा जाए तो रेडियो का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में बिना इंटरनेट या बिजली के भी जन जागरूकता फैलाने, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने और स्थानीय संस्कृति को सहेजने में अहम भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम रेडियो की दुनिया में कायम रहेंगे, आज का ये सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें अब इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

नमस्कार। त्रिवेणी में आज उन तीन शब्दों की बातें जिन्हें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। ये तीन शब्द काफी बोले और सुने जाते हैं। ये शब्द बातचीत के शिष्टाचार हैं। इन्हें बातचीत में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि आत्मीयता और मेल मिलाप रहे, वातावरण अच्छा रहे। इन शब्दों के साथ ना उम्र की सीमा है ना स्टेटस का बंधन। काम करवाने के लिए बड़े छोटों से या बॉस अपने सबॉर्डिनेट से प्लीज कह दें तो काम और अच्छी तरह हो सकता है। प्लीज अनुरोध है। इस अनुरोध में जिसे काम करना है उसे भी सम्मान मिल गया और काम भी खुशी खुशी हो गया। इसी तरह सॉरी शब्द भी आयु, पद और वर्ग का भेदभाव नहीं करता। बस ये ख्याल रखना है कि सॉरी बोलना या माफ करें ये कहना सिर्फ बोला नहीं गया बल्कि उसे महसूस भी किया गया। मसलन गुस्से में किसी को भला बुरा कहने के बाद या देर से पहुंचने पर अगर माफ़ी मांगी गई है तो फिर दोबारा वैसी ही परिस्थितियां ना बने। गलती दोहराने का मतलब है कि पहले मांगी गई माफ़ी निरर्थक है। सॉरी या माफ़ कीजिए जैसे शब्द सार्थक तभी होते हैं जब वाकई उन्हें दिल से महसूस किया जाए। Sorry.

जब हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो किसी को शुक्रिया या थैंक्स कहते हैं। इस तरह आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है और आत्मीयता बढ़ती है। इसलिए जिंदगी में जब भी किसी को शुक्रिया कहने का मौका आए तो फौरन एक मीठा सा थैंक यू बोलें, लेकिन दिल से, और सिर्फ मटेरियलिस्टिक हेल्प तक ही थैंक यू को सीमित ना करें। यानी भौतिक काम या किसी चीज़ को देने पर ही थैंक यू कहना ज़रूरी नहीं। आत्मबल बढ़ाने वालों, सपनों को नई दिशा देने वालों, अपने बेगाने जो भी आपके काम आए, उन्हें शुक्रिया अदा करें।

जिंदगी की डिक्शनरी में प्लीज, थैंक यू और सॉरी का बहुत महत्व है। ये शब्द आभार प्रकट करने या खुद पर काम करने के मौके देते हैं। इन्हें बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि खुद का सम्मान और हिम्मत बढ़ती है। दूसरों को महत्व देने और खुद की जिम्मेदारी लेने की नीयत से बनाए गए ये शब्द सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि जीने की कला सिखाते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी के हर पल के लिए कृतज्ञता हो और गलतियां सुधारने की कोशिश होती रहे, तो कितनी खूबसूरत बन जाएगी ये जिंदगी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे, ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।

0: अपनी पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र खुले समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
5: पोजीशन ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी रिमेंस।
6: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
5: इज रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
1: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक

0: अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म का नाम था आज और कल।
1: बुला रहे हैं तुम्हें।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। जुलाई माह की 23 तारीख यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के विशेष इस सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से।

कार्यक्रम का अगला गीत मनोरंजन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम आपकी परछाइयां।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चित्रलेखा से लिया है। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और धुन बनाई है रोशन ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चित्रलेखा। एक विशेष सूचना हम आपको दे दें, जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज ही हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज की इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म लीडर का दो गाना, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, गीत रचना शकील बदायूनी की है और तर्ज नौशाद साहब की।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई नई मांगें करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले राष्ट्रीय चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि ये किसी एक सरकार या राजनीतिक दल तक सीमित मुद्दा नहीं है, फिर भी विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण करता रहता है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर समस्या है जिस पर गहन और गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। प्रदेश में वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण लगभग 178 सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। चंबा जिला में साच पास मार्ग, सतरुंडी नाला, रानीकोट व कार्थ नाला में बादल फटने से हुई क्षति के कारण सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। इसके अलावा बट्टी दिहट्टी, दुर्गहट्टी, धरवाला व दुनाली मार्ग पर लगातार पत्थर गिरने व भूस्खलन के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर इसे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उधर कांगड़ा जिला की बोह घाटी के गढ़गुन में और स्पेड़ा गांव में बीते दिनों हुई बादल फटने की घटना में 25 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि कई अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को स्थानीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए राहत शिविर में ठहराया गया है और कुछ लोग रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं। हेमराज बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है।
3: वो वैली में जो क्लाउड बस्ट की वजह से काफ़ी डैमेजेस हुई हैं। गढ़गुन गांव में 12 परिवारों के घर बिल्कुल नष्ट हो गए। पेड़ा गांव है, उसमें 11 घर डैमेज हुए हैं और उसके आसपास 12 घर और हैं जो इमिनेंट डेंजर में वहां पर हैं। तो एहतियातन तौर पर दोनों गांव के सभी लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है। फॉर्चुनेट बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इमीडिएट रिलीफ लोगों को डिस्बर्स कर दी गई है। मुख्यमंत्री महोदय लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो स्पेशल रिलीफ के अंतर्गत मदद उन लोगों की जाएगी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 26 जुलाई

0: तक कुछ जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नंदलाल शर्मा का आज हरियाणा के पंचकूला के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। वे 63 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नंदलाल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रदेश की जनता की सेवा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि SJVNL को सुदृढ़ बनाने में भी नंदलाल शर्मा का सराहनीय योगदान रहा है। नाहन के ऐतिहासिक रानी ताल बाग में आज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छता अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि बरसात का मौसम पौधरोपण के लिए सबसे उपयुक्त रहता है और उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की।
1: मानसून के वक्त सही टाइम होता है अगर आप अभी प्लांटेशन करें, सिंस आपकी सॉइल भी अभी डैम्प होती है। प्लांटेशन करना और उनका सर्वाइवल रेट एंश्योर करना ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। और मेरी जनता से सभी से ये अपील है कि हम अपने अपने घरों को, अपने अपने आसपास के एरिया को साफ रखें।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है PMFME योजना, छोटे उद्यमों की बड़ी उड़ान। वाचिका है प्रभा शर्मा।
3: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना देश के छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को नई पहचान और नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। ये योजना छोटे उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनरी, ब्रांडिंग और विपणन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इसका उद्देश्य छोटे और अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को संगठित अर्थव्यवस्था से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यही कारण है कि आज ये योजना छोटे उद्यमों की बड़ी उड़ान का मजबूत आधार बन चुकी है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान जब लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई, ऐसे समय में केंद्र की मोदी सरकार ने महसूस किया कि आर्थिक सुधार केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि गांवों और छोटे शहरों में काम करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को भी मजबूत बनाना होगा। इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत PMFME योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य उन छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाना था जो पहले से खाद्य प्रसंस्करण का काम कर रहे थे, लेकिन पूंजी, तकनीक और बाजार की कमी के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमियों को व्यवसाय की पूरी प्रक्रिया में सहयोग देती है। इसके तहत बैंक ऋण पर 35% तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार, आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे छोटे उद्यम प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं और स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। PMFME योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसके ऋण आधारित घटक के अंतर्गत अब 2 लाख तक अधिक ऋण मंजूर किए जा चुके हैं। ये केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। इन मंजूरियों के माध्यम से हजारों उद्यमियों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि महिलाओं का बढ़ता सशक्तिकरण है। अब तक दिए गए ऋणों में लगभग 44% लाभ महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मिला है। इसके अलावा 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई गई है। इससे अनेक महिलाओं ने अपने पारंपरिक कौशल को सफल व्यवसाय में बदलकर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की है। PMFME योजना के माध्यम से अब तक 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है तथा लगभग 6 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। वहीं 75,000 से अधिक इकाइयां उद्यम पंजीकरण, FMSE और GST जैसी औपचारिक व्यवस्थाओं से जुड़ चुकी हैं। इससे इन उद्यमों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय संस्थानों और बड़े बाजारों तक पहुंच आसान हुई है। ये योजना किसानों के लिए भी लाभदायक साबित हो रही है। जब स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होती हैं, तो किसानों की उपज का बेहतर उपयोग होता है। फलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण होने से उनकी बर्बादी कम होती है और किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है। साथ ही स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग होने से जिले और क्षेत्र की अलग पहचान भी बनती है। वहीं वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करता है। सरकार का लक्ष्य केवल ऋण स्वीकृत करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर उद्यम सफलतापूर्वक चले, आधुनिक तकनीक अपनाएं, बेहतर पैकेजिंग करें और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे।
2: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3:10 हुए हैं कुल्लू और कल्पारिले के।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियाँ आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर FM आया, फिर SMS का ज़माना आया, फिर टेलीफोन, फ़ोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव FM तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज FM इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव ही चलते थे, और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि आयनोस्फेयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या BBC रेडियो उस समय जो चलते थे वो शॉर्टवेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्टेट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है।
0: जी,
1: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज़ की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया FM, और FM ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया।
0: जी,
1: और FM में सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए FM उसके बाद से कंटिन्यूसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जो FM के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं।
0: जी,
1: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली FM ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए FM ट्रांसमीटर को लगाना होता है।
0: जी जी,
1: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फ़ोन में हम

0: से आनंद उठा रहे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए। हम पोस्टर डाला है और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा हैं मन में। सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे। पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन सुन के, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज़ सुनाई पड़ रही होती थी, माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा करें अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बड़ोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूँ कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज़ के जरिए कल्पनाओं की एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला, और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में अव्वल रही और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी, धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
1: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी। और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है। और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब टेंथ के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, टेंथ के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज़्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस नहीं लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़े से चैलेंजिंग ऐसे मिल जाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं मैथ्स में, चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज़ थी बहुत ही एक जैसे बोलते हैं ना कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है,
0: चुनौती के रूप में लिया,
1: चुनौती के रूप में। और फिर मैंने 11th 12th काफ़ी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर, याद है मुझे 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहाँ पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर, अलग अलग साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके। और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी
0: जी, बिल्कुल।
1: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया और
0: क्या बात है,
1: स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला।
0: हाँ हाँ।
1: और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है, तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था, हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट
0: जी।
1: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर जोधपुर में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ, एक बात मैं बताऊँगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में और दूसरा लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी
0: शहर से बाहर नहीं जाना
1: झिझक रहती थी
0: जी जी,
1: तो वो एक चैलेंज था। तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता

0: कन्विंस हो गए और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफ़र और वो बचपन के दिन। और जो बचपन में तो मुझे याद है, मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी और
1: अच्छा
0: मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता
1: क्या
0: था।
1: बात
0: उसके
1: है।
0: कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीज़ें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे तो घर पे थोड़ा मैं जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था, तो ये सब हॉबीज़ मेरी थी उस समय भी।
1: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी। तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है। तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई
0: नहीं
1: आपने, या कोई डांट मार खाई हो तो वो
0: नहीं
1: भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: नहीं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ
1: जी, तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ
0: जी
1: जीती
0: हाँ,
1: थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दें कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं। तो अब यहाँ पर एक गाना आना चाहिए,
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
1: कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं।
0: ठीक है। रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी।
1: जी बिल्कुल।

0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ मीनाक्षी जी। हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ख़ास तौर से सखियों के लिए, जहाँ पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये ना करो वो ना करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो ज़माना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफ़ी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी
0: जी।
1: और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग। तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ, वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूँगी। कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह
0: जी जी।
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो उसमें एक सोलो डांस कंपटीशन भी रखा गया था, बॉयज़ के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हाँ, बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या अच्छा। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कॉम्पिटिशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन।

0: ऑर्गेनाइज्ड.
1: जी
0: तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज़ के साथ ही आप
1: अच्छा
0: पार्टिसिपेट कर लीजिए
1: हाँ
0: और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए. तो फिर मुझे लगा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ. और जो आपने जो अभी गाना बजाया है, दिल है छोटा सा,
1: छोटी
0: वही
1: सी
0: मेरी
1: आशा
0: पसंद का गाना था उस समय. और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 days थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की. और फिर कंपटीशन वाला दिन आया और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहाँ पे. और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला. और 16 boys थे मेरे साथ कंपटीशन में,
1: क्या बात है,
0: सिक्सटीन बॉयज़ एंड आई वॉज़ द
1: वाह.
0: ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज़. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज़ के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बजती है.
1: क्या बात है.
0: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं.
1: जी
0: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का.
1: बिल्कुल सही बात है. और चैलेंजेस को लेना बहुत ज़रूरी है. अगर वहाँ पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती.
0: सही है.
1: और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है. यहाँ पर मीनाक्षी जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,
0: जी
1: फिर ब्रेक के
0: हाँ
1: बाद आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी हैं.

0: दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी, हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी, आपने गुड़िया की बात कही थी उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी कर कुछ कुछ अपनी बातें याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूँ, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को, पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं?
1: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल, जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
0: बिल्कुल, और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी, मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी, या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
1: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे, हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था। और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज़्यादा हम चलाते,
0: आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था?
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज़्यादा के करना पड़ता था
0: जी,
1: क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था, और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफ़ी सुना करते थे, और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो रात को हमेशा हम एक घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है उसमें भी काफ़ी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम
0: जी जी,
1: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी। और फिर बहुत ही वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम होता है और काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है
0: जी,
1: और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास वन ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है
0: जी,
1: तो उसका रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट का के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है
0: जी,
1: और
0: जी,
1: ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुई और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूँकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज
0: जी,
1: तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया, क्योंकि काफ़ी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पर कर रहे हैं
0: जी,
1: तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफ़ी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर, तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की, और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी, और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा और आज मुंबई
0: जी,
1: तो 27 ईयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए, और काफ़ी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
0: जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं, और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है। भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे। तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा, तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें। और देखिए ना, हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन हैं। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफ़र मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका पर, जन जन को जोड़ने वाले और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतज़ार था बहुत समय से। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ श्रोताओं ने रेडियो की

0: चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूँ और एक शिक्षक हूँ और सखी सहेली सुन रहा हूँ, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर VBS अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम लें।
1: हाँ, श्योर श्योर।
0: कौन सा गाना हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का?
1: हाँ हाँ, बहुत अच्छा।
0: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था, सुनते हैं यही गाना।
1: जी जी।

0: जब भी खुशी का मौका आता है तो ये खुशगवार लम्हा चुन लेते हैं लोग। हमारी बहुत सारी सखियाँ उधर उस पार बैठी हैं जिसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं, कांच के पार दिखाई दे रहे हैं, वो खुशी झलक रही है और थिरक भी रही है गानों के साथ साथ। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इस शो की ट्रिप सबसे ऊपर होनी चाहिए। मीनाक्षी जी मौजूद हैं इसलिए एक सुझाव है, सखी सहेली पूरे देश की पूरे देश में शामिल है, कभी कभी इस किसी प्रांत का एक लोकगीत सुनवाना चाहिए, इससे भारत के सांस्कृतिक सद्भाव को कुछ और मजबूती मिलेगी। ये बात हम अभी फिल्म जो लोकगीत फिल्म में आए हम सुनवा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज मेरी उम्र 30 साल है और मैं राजस्थान के एक ग्रामीण इलाके का रहने वाला हूँ। बात उस समय की है जब फ़ोन नहीं थे। मेरे दादाजी दुबई से सोनी का रेडियो लेकर आए थे और रोज़ सुनते थे। धीरे धीरे वक्त बदल गया, मेरे दादाजी ने दुनिया को अलविदा बोल दिया और आज मैं भी पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन आज दादाजी के गुजर जाने के 12 साल बाद भी जब रेडियो पर विविध भारती के प्रोग्राम सुनता हूँ तो आँखों में वो समय दादाजी की याद ज़रूर आती है। शायद तब ये जब तक ये रेडियो रहेगा तब तक वो यादें बनी रहेंगी। क्या बात है मीनाक्षी जी, ये तो हम सब के जज्बात से जुड़ी हुई बात है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपको अपने रेडियो करियर का एक ऐसा पल चुनना हो तो जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व हो तो कौन सा पल आप चुनना चाहेंगी?
1: हाँ ममता जी, बहुत ही आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किया क्योंकि आप एक ही पल चुनने को बोल रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो 27 इयर्स के इस करियर में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आए या ऐसी परिस्थितियां बनी कि कठिन समय में भी हम लोगों ने तकनीकी रूप से ब्रॉडकास्टिंग जारी रखा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी। तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा बताऊंगी, हमारे श्रोता लोग भी उससे रिलेट कर पाएंगे कि हमारे यहाँ जैसे कि जानते हैं पहले LPs होते थे, फिर मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो 2002 की बात है जब मैं जयपुर में कार्यरत थी और उस समय नए नए कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे और कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग का आरम्भ हुआ था।
0: जी।
1: और उसी समय एक ये प्रक्रिया भी शुरू हुई थी कि जो भी हमारी आर्काइव वैल्यू का जो कंटेंट है, क्योंकि आकाशवाणी का तो इतिहास बहुत पुराना है और हमारे पास कई महानुभावों की महान ऑडियो बाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उस समय उसको डिजिटाइज करने का भी एक दौर शुरू हुआ था। तो उसमें ये था कि चूंकि अब कंप्यूटर आ गया है तो सब कुछ उसके थ्रू फास्ट और अच्छा होने लगा था
0: जी।
1: और जो पुराने LPs थे और जो मैग्नेटिक टेप्स थी उनको भी हम रियल टाइम में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस शुरू किया था। तो उस समय जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं मीडिया को, जब टेप या उसके अंदर स्टोर रहता है, तो कुछ थोड़ी सी उसमें नॉइज़ वगैरह डेवलप हो जाती है। तो उस समय हम लोगों ने एक कोशिश की कि जो भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में, जो ला रहे हैं मैग्नेटिक टेप्स को, तो उसमें जो भी उसका नॉइज कंपोनेंट है उसको हम थोड़ा क्लीन कर लें। तो उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम, एक सेट ऑफ स्टेप्स बनाया सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे हम उसको अच्छा बना दें ताकि हमारे श्रोताओं को स्पष्ट रूप से क्लियर रिकॉर्डिंग सुनाई सुनने को मिले। और उस काम में बहुत मज़ा आता था क्योंकि आपको सुन के देखना पड़ता था कि ये कैसा रिकॉर्ड है और अब क्लीन होने के बाद कैसा है
0: जी।
1: और उसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस इसलिए बनाना पड़ता था कि बेसिकली नॉइज़ रिडक्शन में आप कुछ फ्रिक्वेंसीज को ही हटाते हैं तो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है
0: जी
1: वो कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। तो उस बैलेंस के साथ हमने कई हजारों रिकॉर्डिंग्स को क्लीन करके और फिर उसको अच्छे से स्टोर किया है। तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने में, मेरे इंटरेस्ट का भी था और उसके लिए फिर मुझे रिकॉग्निशन और एक अवार्ड भी मिला। तो इस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आया ममता जी।
0: जी, और ये सुनते हुए हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज़्यादा रहा। और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला है खुद, और महिलाओं के लिए किसी ऊँचे ओहदे पर पहुँचना काफ़ी संघर्ष में होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है। तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया, क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ।
1: नहीं, बहुत आपके सवाल बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में, फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे बैलेंस करना है, और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही ज़रूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है
0: जी,
1: क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है, उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है
0: जी,
1: कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे।
0: जी,
1: तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी मेरी ओर से जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज़ ऑफिस में रखें, घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें, और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे, अपने आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा मैं ये कहूँगी कि कई चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी हो।

0: होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज़ है, और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें करके ही आप अपने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा।
1: जी
0: उसके अलावा ममता जी, मैं आपको दो चीज़ें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि
1: बिल्कुल
0: एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसमें महिलाओं को काफ़ी हेजिटेशन होता है, और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए, घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगी
1: जी
0: कि ये सब चीज़ें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज़ है, जो शौक है, वो भी वो पूरे करें। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं,
1: जी जी
0: और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फॉर एवरी वन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट।
1: बिल्कुल
0: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बैलेंसिंग इज़ द की, आई
1: जी,
0: थिंक।
1: सही कह रही हैं आप। और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं। और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक़ के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक़ है और पेंटिंग का भी बहुत शौक़ है, तो ज़रा इन दोनों शौक़ के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं, आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
0: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो डांसिंग का शौक़ भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है
1: जी
0: वो मैं कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात है।
0: अभी अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए हैं डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। और जिम में, जिम के लिए तो मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफ़ी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम, तो वो माहौल वैसा ही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स से तो मैं ये जा ही
1: जी
0: रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नेचुरली 11th 12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक़ पूरा नहीं कर पाई मैं। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की, और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग,
1: क्या
0: एंड
1: बात है।
0: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के, तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया।
1: तो
0: तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ ना कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ
1: जी
0: जिससे आप सीखें, दूसरे सीखें। और
1: जी
0: मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ।
1: जी जी
0: बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीज़ें सीखती हूँ,
1: जी जी
0: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। उसमें जो नई नई चीज़ें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूँ और अपने आप को अपडेटेड रखूँ।
1: जी मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें और तकनीक

0: इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो। और अब यहाँ पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुँचा रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात
1: क्या
0: है भाई, आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे अच्छा। शहर से हुई है। अच्छा। और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी शादी हुई थी सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्मपत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियाँ हमारे श्रोताओं की आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं। यहाँ पर गाना है ये

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक़ इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे ज़रूर परवान दें, उसे ज़रूर पंख दें, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देश भर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना

0: चाहूंगी कि परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती है,
1: जी
0: परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
1: जी
0: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूंगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए,
1: क्या बात है,
0: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए।
1: क्या बात है, बहुत
0: तो
1: बढ़िया।
0: जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का बैलेंस बनाए रखें, हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूँगी मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनाक्षी जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। ज़ुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, HR पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर संतोष जाधव जी, और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान तायडे जी, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करें आप सभी के सहयोग से। और
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
0: सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला, फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं और जो रेडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या रेडियो सेट के थ्रू देख रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती के स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
0: बताइए जी क्या करते हैं हमीद भाई?
1: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
0: तो ये खानदानी काम है?
1: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
0: ये तो मुझे पता है कि जो छिपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
1: जी सर।
0: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
1: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
0: जी।
1: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छिपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
0: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
1: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
0: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
1: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
0: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
1: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
0: अच्छा अच्छा।
1: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मोती जिनको बोलते हैं।
0: जी जी।
1: यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मोती।
0: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
1: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
0: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, इजाद किया, क्या मामला है?
1: सर चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
0: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
1: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा।
0: अच्छा।
1: मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
0: किस तरह से ये भी बताइए
1: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर,
0: जो
1: ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बढ़ापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नक्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन के साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया।
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई, लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ, आपकी जो पेश करने का अंदाज ही आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दोराई नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये बीआर चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी और सर ये मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहाँ रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहाँ पर।
1: बिल्कुल सर जी, और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ मेरे को, ये लगा कि एक दिन पहले जान लेता मेरे को आकाशवाणी।
0: जी मुलाकात होती। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हालचाल है छिंदवाड़ा की, बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा, बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो FM पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर पहले से मैं ये बोलना चाहती हूँ जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ।
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ।
0: स्वागत।
1: मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागते आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है।
1: सर आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब आप आते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं।
0: जी जी।
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत अच्छा लगता है। और आज के फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे हमने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ।
0: अच्छा।
1: आज पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके।
0: बिल्कुल।
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
0: तो आप किस शहर में, आपने कहा आप जगन्नाथपुरी में?
1: भुवनेश्वर से हैं।
0: तो
1: विविध भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
0: बिल्कुल सही आपने बात बोली है।
1: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा अच्छा, बताइए जी भोपाल के क्या हालचाल हैं?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
0: जी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
1: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
0: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
1: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
0: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
1: नहीं, अभी गेट नहीं खुले, बारिश भी नहीं हुई है, हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
0: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
1: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है, भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बंदियार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे
0: जी,
1: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था
0: जी,
1: और कई जगह है वहाँ।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बाबरा का लिखा हुआ।
1: और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर नमस्ते, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूनुस सर बात कर रहे हैं?
0: जी।
1: अरे ये आवाज तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल आपसे बात हो रही सर,
0: जी
1: बड़े
0: मुझे
1: दिनों
0: भी अच्छा
1: बाद
0: लग रहा
1: फोन
0: है।
1: कनेक्ट हुआ है। तो सर विद भारती के बारे में आप कितना कुछ बताऊँ उतना कम है,
0: जी
1: क्योंकि मेरे जीवन की जब शुरुआत हुई थी इंदौर आए थे हम,
0: हाँ
1: और जब गांव में रहते थे तो पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विविध भारती बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो।
0: जी
1: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, सखी सहेली, हेलो फरमाइश, सारी यादों ने एक मिलजुल के मेरे अंदर एक फिल्मीपना लेके आया था। मैं खुद FTII से एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मैं पास आउट किया हूँ सर वहाँ पे।
0: क्या बात है।
1: जी, वो मेरा एक दौर था जब इस दुनिया मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर एक घटना होती है, मेरे फादर को कैंसर होता है, उसके
0: जी
1: बाद मेरी लाइफ में वापस एक यू टर्न आता है,
0: जी
1: और विविध भारती ने वैसा ही साथ निभाया, बल्कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते गए आपके द्वारा, एक से एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम मिले हैं। और शुरू से, क्योंकि मैं भी अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, छोटा मोटा एज ए स्पीकर का रोल है मेरा, मैं भी ठीक ठाक करता हूँ, अपना रोल प्ले करता हूँ, तो वो आपका जो अदायगी, आपका जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है
0: बहुत
1: सर।
0: शुक्रिया। और आज किस
1: जी,
0: गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मेरा अभी क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है। आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं या ऐसे बता दूं?
0: नहीं नहीं बिल्कुल गाइए।
1: रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से?
1: सर, संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश से मैं प्रकाश जाबी बात कर रहा हूँ। सर
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया है, अस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे। हमारे टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विविध भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने फरमाइश की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश। हाँ
1: सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: जी। सर बस बहुत अच्छा हूँ, और विविध भारती का जो हेलो फरमाइश है बड़ा ही लोकप्रिय और चर्चित प्रोग्राम है। एक बार जब मैंने इस प्रोग्राम में सुना, एक श्रोता का कॉल लगा और उन्होंने बताया कि 20 साल बाद मेरा कॉल लगा।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो बड़ा अचंभा लगा, भाई 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
1: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिसनर्स हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं। इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए।

0: हेलो फरमाइश जी, बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, बोल रहे हैं बेंगलुरु से।
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारमन।
0: सीतारमन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ बिताई है आपने?
1: हाँ, विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम ऐसा था पहले।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: उसके बाद में चेंज हो गया विविध भारती।
0: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन हम बोलने लगे उसके बाद।
1: मिस्टर यूनुस खान बोल रहे क्या?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मेरी स्पेशल सरप्राइज है। और सब कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए, विविध भारती से जो आपका लगाव रहा है उसके बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा लगा है। हम तो पहले तो यही तो था, विविध भारती और रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन विविध भारती जो है बहुत अच्छे से तरह चल रहा है।
0: आपको हिंदी सिखाने में विविध भारती ने क्या भूमिका निभाई है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो ऐसा तो लग रहा है कि हमको जितना प्रोग्राम बज रहा है ना, वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए।
0: अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आज आप किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: हम तो गजल का।
0: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी का है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। यही वाला गाना।
0: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है। जरा सुनाइए कुछ।
1: पहले हम गाते थे, लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारा। बोल यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था। बाद में से ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन चलते है, हमारे गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
0: जी, हम समझ सकते हैं। और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
1: नूर की आलत किसे पेश करूं, मुरादों की हसीनत किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश
1: मैं
0: जी।
1: कुशलेश वर्मा, जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा, बोलिए कैसे हैं जी।
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है। मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी, आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी।
1: जी।
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है। इस बार सावन लेट है, तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है।
0: जी, जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में,
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के,
0: और इस बरस जो है वो बारिश लंबा इंतजार करवा रही है आपको।
1: बेहद लंबा इंतजार करा रही है, लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है।
0: जी बिल्कुल। आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था MNC कंपनी में।
0: अच्छा, तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ, अभी मतलब नया स्टार्टअप है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में, धीरे
0: हाँ
1: धीरे
0: हाँ
1: जम जाएगा।
0: बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। जी
0: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। आपको बता दें कि सोमवार को दिन में 11 बजे फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं और जिन श्रोताओं के कॉल्स एक बार शामिल हो जाते हैं उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए श्रोताओं को मौका दिया जा सके। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट

0: परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले दोपहर 12 बजे पहली बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग करने की अपील की।
1: वो बहाना जुड़ रहा आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में जो बोलते हैं अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं ना, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा को भी नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री मनोहर लाल ने बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। अप्रैल 2014 से लेकर अब तक लगभग 324.7 गीगावाट तक की नई उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इससे देश बिजली की कमी वाले राज्य से बिजली की पर्याप्तता वाले देश में बदल गया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर बल दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने आज कहा कि सरकार ईरान सहित संघर्ष में शामिल पक्षों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। श्री जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी से भी मुलाकात की और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल SIT ने त्रावणकोर देवस्यम बोर्ड TDB के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व TDB अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में 3 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak.

आइए अब सुनते हैं मन्ना डे व साथियों की मिलीजुली आवाजों में गाइड फिल्म से ये भक्ति रचना। संगीत दिया है सचिन देव वर्मन ने।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: रक्षाबंधन। इस फिल्म से ये भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर का की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं संत ज्ञानेश्वर, फिल्म से ये भक्ति रचना जिसे गाया है मुकेश श्याम हेमा देवा साथियों ने।
1: भक्ति शक्ति है,
0: संगीत यह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से कुछ भजन। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, कार्यक्रम है युवा मंच और कार्यक्रम में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी युवा दोस्तों का और हमारे तमाम श्रोताओं का। जी हाँ, कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेनू निकोटिया, आपके साथ करेंगे बातें मिलकर कुछ खास। जी हाँ, नई उड़ान सपनों की हो या आसमान के बुलंदियों को छूने की, ज़रूरी है उसमें वो जुनून होना जो देता है हर सपने को नया आयाम। ज़रूरी है उसमें वो जज्बा जो रुकने नहीं देता है हमें तब तक जब तक हम उसे पा ना लें। तो कुछ ऐसा ही सफ़र रहता है हमारे सपनों की उड़ान का, जो हर दिन कुछ नया हमें सिखाकर जाता है, हर गलती के रूप में नया अनुभव कराता है, हर असफलता कभी तोड़ती है हिम्मत तो कभी जोड़ती है फिर से टूटे सपनों को। यकीनन युवा दोस्तों, हौसलों की उड़ान का यह सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि ये इम्तिहान होता है हमारे धैर्य का, ये परीक्षा होती है हमारे सब्र की, ये कसौटी होती है इस बात की कि हम विपरीत परिस्थितियों में बिखरते हैं या और निखरते हैं, थककर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं या फिर दुगनी ऊर्जा से फिर से जुट जाते हैं उस अधूरे सपने को पूरा करने में। जी हाँ, बातें भी होंगी, जानकारियाँ भी होंगी और मनोरंजन भी होगा। तो आइए सुनते हैं मिलजुल कर ये गीत।

जी हाँ, युवा दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में रोजगार समाचार और साथ ही बातें होंगी कुछ विज्ञान जगत की। जी हाँ, सबसे पहले हम लेते हैं कुछ आज के रोजगार समाचार।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 7,500 सरकारी पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन पदों के लिए संबंधित विभागों द्वारा चरणबद्ध तरीके से अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में एमटीएस, एलडीसी, मेडिकल ऑफिसर तथा अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 है। डॉक्टर बाईस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 24 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी मंडी में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। जल शक्ति विभाग के विभिन्न मंडलों जैसे ज्वालामुखी, ज्वाली, ज्वालामुखी, सुंदरनगर, ऊना, तीसा और जोगिंदरनगर क्षेत्र में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पस वर्कर के पदों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अंतिम तिथियां संबंधित मंडल के अनुसार अलग अलग हैं। और अग्निवीर भर्ती, भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती 2026 के तहत ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाए।

चुका है। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल प्रशिक्षण और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों के अभ्यर्थियों एआरओ पालमपुर के अंतर्गत आते हैं। वहीं मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना सहित अन्य जिलों के अभ्यर्थी संबंधित एआरओ के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश पत्र, मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित तिथि पर साथ लेकर ही भर्ती स्थल पर पहुंचे। भर्ती से संबंधित नवीनतम सूचना केवल भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आपको मिलेगी।

स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बरियारे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सांवरियारे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC

0: Apply.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
4: जी हाँ युवा दोस्तों, धर्मशाला में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 1 अगस्त से 14 अगस्त तक किया जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित यह रैली मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों के युवाओं के लिए देश सेवा का एक सुनहरा अवसर है। अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अपनी तैयारियां पहले से जांचने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति या मौसम की चुनौती का तुरंत सामना किया जा सके। नोडल अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार धर्मशाला को रैली का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि सभी सरकारी विभाग मिलकर काम कर सके। अभ्यर्थियों के रुकने के लिए विशेष इंतजाम, वाटरप्रूफ टेंट, पर्याप्त मोबाइल शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 45 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, सामान्य स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी। जी हाँ, पहले इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 4 जुलाई 2026 निर्धारित थी, जिसे आयोग ने हाल ही में जारी आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से आगे बढ़ा दिया है। उम्मीदवार केवल HPPSC OTR पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कुछ विज्ञान जगत की। रोजगार समाचार में बस इतना ही, और विज्ञान जगत कि कुछ रोचक और नवीनतम खबरों के साथ। सबसे पहले बात भारत की। भारत ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए निजी क्षेत्र के पहले ऑर्बिटल रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। यह उपलब्धि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है, और भविष्य में सैटेलाइट प्रक्षेपण तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के नए अवसर खोलेगी। अब स्वास्थ्य विज्ञान की बात की जाए तो भारत को अपनी पहली डेंगू वैक्सीन के लिए नियामकीय मंजूरी मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डेंगू की रोकथाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और भविष्य में लाखों लोगों को इस बीमारी से सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। अंतरिक्ष विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यह समझने में नई सफलता प्राप्त की है कि महाविशाल ब्लैक होल अपने आसपास की गैस को किस प्रकार आकर्षित करते हैं। ये खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आकाश गंगाओं के विकास को समझने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, जानकारियां होंगी और भी, लेकिन लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

युवा मंच कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं का और युवा दोस्तों का। जी हाँ, अब बात की जाए मौसम विज्ञान की। तो मौसम विज्ञान की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग और इसरो के उपग्रहों के अनुसार इस समय मॉनसून ने देश के अधिकांश हिस्सों को अपने प्रभाव में ले लिया है। वैज्ञानिक लगातार उपग्रहों के माध्यम से बादलों की गतिविधियों और वर्षा की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, जिससे मौसम पूर्वानुमान और अधिक स्ट्रीक बन रहा है। ऊर्जा विज्ञान के क्षेत्र में चीन ने ईस्ट फ्यूज़न रिएक्टर, जिसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है, ने अत्यधिक गर्म प्लाज्मा को 1066 सेकंड तक स्थिर बनाए रखकर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि भविष्य में स्वच्छ और असीमित ऊर्जा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। युवा साथियों, विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, संचार, मौसम और दैनिक जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। नई वैज्ञानिक खोजें हमें जिज्ञासु बनने, प्रश्न पूछने और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ आज का विज्ञान जगत यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विज्ञान और तकनीक की नई जानकारियों के साथ। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला विकास पठानिया से। अब अपनी रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया को दीजिए अनुमति। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 और 50 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

0: अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सुरमई सांझ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर मुज्जंग ग्राइंदियां कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज बातचीत का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। रात्रि 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनेगा अभिनेत्री कियारा आडवाणी पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर रंगे गजल, फिल्मी और गैर फिल्मी गजलें प्रसारित की जाएंगी। रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा। और 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 7:40 पर एक और भक्ति में प्रस्तुति आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में जानकारियों के साथ आप आनंद उठाएंगे मनोरंजन का भी। महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:59 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 6.5% की कमी आने के बावजूद प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने व दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी प्रदान की है और इस नीति के तहत किसी भी सड़क परियोजना के 5 महत्वपूर्ण चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

0: शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों को शीघ्र व कठोर दंड दिलाने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। बिंदल ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके।
1: नीट के पेपर लीक को लेकर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर गंभीर है। पेपर लीक होने के तुरंत बाद सीबीआई ने अपना काम शुरू किया, दोषियों को जेल में डाला और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को सजा दी जाए आंदोलन छात्रों का रहा, उसके प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील रही, परंतु राजनीतिक दलों ने राजनीतिक साधन के लिए इस आंदोलन को हाई किया।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि भाजपा देश के युवाओं व छात्रों के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है और अपनी नाकामियों व विफलताओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर युवाओं, छात्रों और विपक्षी नेताओं की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नीट व सीबीएसई के पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आंदोलनरत छात्रों की मांगों को मानना चाहिए। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिससे कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। कांगड़ा जिला की बोह घाटी के गढ़गून और स्पेड़ा गांव में बीते दिनों हुई बादल फटने की घटना से 25 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि कई अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की।
2: वो वैली में जो क्लाउड बस्ट की वजह से काफ़ी डैमेजेस हुई हैं। गढ़गूं गांव में 12 परिवारों के घर बिल्कुल नष्ट हो गए। पेड़ा गांव है, उसमें 11 घर डैमेज हुए हैं और उसके आसपास 12 घर और हैं जो इमिनेंट डेंजर में वहां पर हैं। तो एहतियातन तौर पर दोनों गांव के सभी लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है। फॉर्चुनेट बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इमीडिएट रिलीफ लोगों को डिस्बर्स कर दी गई है। मुख्यमंत्री महोदय लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो स्पेशल रिलीफ के अंतर्गत मदद उन लोगों की जाएगी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक कुछ जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा।
3: से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं बॉम्बे टू गोवा फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

ये संगीत है खय्याम का, बोल हैं कैफी आजमी के, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। आखिरी खत फिल्म से ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

अपना देश इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्रां दी सुनने वाले सारे ही श्रोतें जो पंचती ते फते राम राम। कन्नै अज मेरे कन्नै न
1: चंचलो, ता किसान भाइयो चंचलो दी भी तुहां जो नमस्ते राम राम। कन्नै पंच जी तुहां जो भी नमस्ते राम राम। कन्नै टियाले पर किसान भाइयां पुजी हो तुहां दा मनोरंजन करना है, कन्नै सोगी सोगी जानकारियां भी सांझा करनी है।
0: जी ता चंचल जी राम राम होइए। कन्नै अहां जेड़ा सुन टियाला अपना सजाई ते है, प्यारे प्यारे लोक गीत भी लेंदे और कन्नै कन्नै अहां जेड़ी इसे जानकारी भी अपने स्रोतियां तक पहुंचानी है ना।
1: हां जी,
0: ता जानकारी दसा तुहां सबते पहले अज क्या जानकारी लेके आए हो न।
1: हां जी दिखा पंच जी, हां जालू भी टियाले पर आंदे न ता अपने किसान भाइयां ने जेड़े से सरकारी योजना दे बारे च या फिर सरकारी योजना दे बारे च गल करदे न या फिर अपने किसान भाइयां ने जेड़ी जानकारियां जानकारियां जेड़ी सांझा कीतियां होंदी अहां दे किसान भाइयां ने तिन्हां जो अपने किसान भाइयां ने किसान भाइयां जो सुनांदे न तां अज जेड़ी सरकारी योजना दे बारे च अपने किसान भाइयां ने अहां गल करनी है, सै प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ता किसान भाइयो ये जेड़ी योजना है सै 18 फरवरी 2016 च शुरू कीती गई थी। कने इस योजना का जेड़ा मुख्य उद्देश्य है सै किसानों जो वित्तीय सहायता जेड़े सै देना है। कई बारी क्या होंदा कि बरखा ज़्यादा हो जाती या फिर घट होंदी, कई बारी ओलावृष्टि जेड़े सै ज़्यादा हो जाती तो इसने आंदी किसान भाइयों की फसल जो काफ़ी नुकसान होंदा है, जिसकी वजह ने किसानों जो काफ़ी परेशानियों का सामना जेड़ा सै करना पौंदा है। ता किसानों की इस परेशानियां जो ध्यान च रखी करी सरकार ने इस योजना जो जेड़ा सै शुरू कीता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों जो खरीफ फसलों वास्ते बीमा राशि का 2%, रबी फसलों वास्ते 1.5%, व्यावसायिक कने बागवानी फसलों वास्ते 5% प्रीमियम का भुगतान जेड़ा सै किते जाना, कने बाकी जेड़ा भी नुकसान होंदा तिसदी भरपाई जेड़ी सै सरकार करती है। ता ये योजना जेड़ी सै सारे किसान भाइयों वास्ते है, चाहे किसान छोटे हैं या फिर बड़े स्तर पर खेती करते हैं, सारे जो एक बराबर फायदा जेड़ा सै इस योजना के तहत मिलता है। किसान भाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके ने आवेदन करी सकते हैं, कने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा जेड़ा सै ले सकते हैं। किसान भाइयो सरकार जेड़ी सै खरीफ फसल 2016 ते 2025 तक 597,230 किसानों जो 131 करोड़ 41 लाख रुपए का मुआवजा जेड़ी सै दे चुकी है।
0: जी जी,
1: ता इस ते बाद दिखा अपने दे दिखा पंच जी किसान भाई अहां दे दिन भर जेड़े सै कम करी के थकी रहे होंदे, ता तिहां दी थकावट दूर करने वास्ते अपने किसान भाइयों दा मनोरंजन भी करदे न, तिहां जो प्यारे प्यारे लोक गीत भी जेड़े सै सुनांदे न, ताकि दिन भर जेड़ी भी अहां दे किसान भाइयों दी थकावट होंदी सै थोड़ी दी दूर होई जाए। कने इस दे सोगी अहां दी किसान भैणां बेचारियां सै खेतां च भी कम करदियां, कने आए के फिरी घरे भी तिहां जो कम करना होंदा ता तिहां दा मनोरंजन करना दा फर्ज बनता है। ता सुनांदे न अपने किसान भाइयों एक प्यारा दिया लोकगीत।

0: यूं लगता था कि भाई हाँ फसल तो लगाई थी, इतनी मेहनत भी की थी, इतना है ना खर्चा भी किया,
1: बिल्कुल
0: पर कई बार क्या होता कि मौसम की वजह ने या कई बार कोई बीमारी वगैरह लगी आती तो किसान भाई अंदर अंदर डर लगे रहता था कि भी दिखा फसल खराब हुई तो हाँ नुकसान हो जाना ना।
1: जी
0: तो इसी करके सरकार ने जो सारे किसान भाइयों वास्ते फसल बीमा योजना शुरू की थी। कहने इस योजना का फायदा यह है कि हाँ किसान भाइयों हूँ चिंता मुक्त हुई कि भी अगर किसी कारण बस फसल खराब हो भी आती है तो तिना जो अगर फसल खराब हो जाती है तो तिना जो मुआवजा मिली जाना।
1: बिल्कुल। और इस बीच हाँ दा कई बार सूखा पई है या फिर ज़्यादा बारिश हुई है तो बाढ़ आई जाती है ना,
0: हाँ जी
1: ओला वृष्टि है, चक्रवात है, भूस्खलन है या फिर किसी प्रकार का रोग जड़ा सा साढ़े फसला जो लगी जाता, तो इन्हें सारिया ही चीज़ों से बचाव जड़ा से साढ़े किसान भाइयों का उन्हों की फसल का जड़ा सा उन्दा है ना।
0: जी
1: तो यह इतना था साढ़े जड़ा कृषि बीमा योजना के बारे च। और हाँ जड़ा सा इसका जरूर जड़ा सा फायदा लेना है ता इस दे कन्या होना। हाँ फिर ते चलना लोक जानकार दी तरफ और सुनना एक और प्यारे दे लोक गीत।

0: जी तो चंचलो जी, हाँ सिंह दी बेलाए प्यार दे लोक गीत सुनिया कने आशा करनी सारे श्रोतियां भी जरूर पसंद आया होना है ना जी।
1: हाँ जी, कने दिन भरी जेड़ी भी थकावट है दे किसान भाइयों की सै दूर हुई होनी, कने तनाव भी जड़ा से थोड़ा मता घटिया होना है।
0: जी
1: कने इस दे बाद अपने किसान भाइयों ने हाँ गल करनी है, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम च दिखा आते किसान भाई किसान हैं, तो किसानी सोगी सोगी डंगर बच्छू भी तेना पाले होंगे है ना।
0: हाँ जी
1: तो अज जी गल करनी है अपने किसान भाइयों ने सै करनी है कि बरसात के मौसम च हाँ दे किसान भाई अपने पशुओं का ध्यान कियां रखी सकते हैं।
0: हाँ जी
1: तो किसान भाइयों दिखा बरसात के मौसम च तो वैसे भी बोलते हैं कि कई तरह दी बीमारियां सै चाहे आसा होन चाहे आदि डंगर बच्छू होन है ना, चाहे आदि फसल हो, तो लगदियाँ लगदियाँ। तो
0: जी
1: इस करके हाँ दे किसान भाइयों जो आपू सोगी सोगी अपने डंगर बच्छुओं का भी पूरा पूरा ध्यान जोड़ा सै रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, तुहारा बोलने मतलब कि अहां दे जेड़े पशु ने तिना जो आंतरिक जीवी होंदे बाह्य परजीवी ने है ना,
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: मक्खी मच्छर कई तरह दी जेड़े से परजीव जेड़े से तैयार होई जांदे अजकल, क्योंकि साढ़े जेड़े बरसात के मौसम च सीलन होंदी हर जगह, तो ये ना मक्खी मच्छरों का बधने का जेड़ा से कारण बनता, तो इस बीच अहां जो जेड़ी से अपने जेड़ी ग्राला जिथुआ पशु बनते उत्थ साफ सफाई रखना चाहिए, और कन्ने ही इन मक्खी मच्छरों से बचने वास्ते जेड़ा से समय समय पर अपने जेड़े पशु दे स्थान बहकन तिथु जेड़े से छिड़काव जेड़ा से दवाइयों का करना चाहिए। हाँ
1: जी पंच जी तो बिल्कुल ठीक बोलिया, क्योंकि गल हुंदी कराला दी, तो अहां दे डंगर बच्छू जड़े से ज्यादातर बीमारियां कराला ते लगदी है ना, क्योंकि बरसात दे मौसम च नमी बड़ी हुंदी आ दे जड़े डंगर बच्छू से गुंतर वगैरह भी करदे न,
0: जी जी
1: तो तिसने के हुंदा कि हां दे जड़े डंगर बच्छू से सिजी आंदे न, मतलब
0: हाँ जी हाँ जी
1: गीले रहंदे, तो तिसने नमी दी वजह ने हां दे डंगर बच्छू जो कई तरह दी बीमारियां लगदियां है ना, तो इस
0: हाँ, जिस
1: करके
0: बीच जेड़े बाहरी परजीवी ने चित्तड़ पिछड़ जेड़े से तिन्हें शरीर च लगे होंगे, और उन्हों का जेड़ा खून लगातार चूसते रहेंगे है ना,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: इन्हों सारिया ही बीमारियों से निजात पाने वास्ते तो सब तो पहले तो साफ सफाई रखनी है, समय समय पर दवाइया का छिड़काव करना है, और अगर ऐसे परजीवी साढ़े पशुओं च लगे तो तिन्हों पर भी जेड़ा से हाँ दवाइया का छिड़काव करके अपने पशुओं जो उन्हें परजीवियों से निजात पाना है ना, ये
1: जी
0: तो हुई है बाह्य परजीवी की। फिर कन्ने कन्ने अहाँ दे आंतरिक परजीवी भी जेड़े से बरसात के मौसम च ही जेड़े से पनपते हैं, क्योंकि अहाँ का पशुधन जेड़ा से कई बार अहाँ अपने खुले छड़े होंगे है ना
1: हाँ
0: अपने
1: जी
0: खड्डा नालू च, तिथु जेड़े से कई बार साढ़े पशु जेड़े से खड्डा वगैरह का दूषित पानी जेड़े से पी लेंदा, तिसते तेना दे पेटा विच भी जेड़े से पेट के कीड़े जेड़े से तैयार हो जाते हैं, तो इस वास्ते साढ़े पशु विभाग के जेड़े विशेषज्ञ होंगे से बोलते हैं कि उन्हें जो जेड़े से साले च चार बारी जेड़ी से कीड़े मारने वाली दवाई जेड़ी से जरूर हाँ दे पशुओं जो पिलाना चाहिए है, जिससे कि तिना दे पेट जेड़ा से जेड़े कीड़े ने नुकसान करते हैं तिना ते जेड़े से निजात मिली सके, और जो भी से खाना पौष्टिक आहार खाते हैं से उन्होंने शरीर चु लगी आए, तो इसते जेड़ा से अहाँ का दुध का उत्पादन भी बढ़िया रहता है, कने उन्हों का स्वास्थ्य भी जेड़ा से बने रहता है ना।
1: हाँ जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोलिया, कने इस दे सोगी बरसात दे मौसम चाहां दे पशुओं जो एक होर बड़ी खतरनाक बीमारी लगती है
0: जी
1: मुंह पका खुरपका कने गलघोटू रोग है ना,
0: हाँ बिल्कुल
1: तो इस
0: बिल्कुल
1: रोग ते बचाव वास्ते भी हाँ जो समय समय पर डॉक्टर ते सलाह लेंदे रहना चाहिए, कने अगर हाँ जो लगता कि हाँ दे पशु जो ये बीमारी हो दी या इस दे लक्षण लगा देन, तो एकदम जड़े से डॉक्टर ते सलाह ले के इलाज जड़े से करवाई लेना चाहिए।
0: जी जी और इस दे कन्ने कन्ने हाँ जो जेड़े से अजकल खाने पीने का भी जेड़े से अहाँ दे पशुओं जो ध्यान रखना चाहिए, जेड़े पानी है खासकर साफ सुथरा होना चाहिए, मटमैला नहीं होना चाहिए, और उस बीच जेड़े से अहाँ दे कन्ने कन्ने जेड़े पौष्टिक आहार ने से भी अजकल अहाँ जो एहतियात तौर पर जेड़े से बढ़िया जेड़े से देने चाहिए, क्योंकि साढ़ा अजकल बरसात का मौसम है लगातार बारिशों होती है, तो साढ़े किसान भाई जेड़े से खेतरां ते जेड़ा से हरा चारा ले ले आवा करते, और कन्ने कन्ने उस जो अहाँ जो सीधे ही अपने पशुओं जो नहीं खिलाना है ना, क्योंकि उस हरे चारे जो थोड़ा सुकाई केरी उस दे कन्ने कुतरी करी जेड़े से अपने सुखे चारे कन्ने जेड़ा मिश्रण बनाई करी जेड़ा से तेना जो देना चाहिए, ताकि साढ़े पशुओं का स्वास्थ्य जेड़ा से लगातार अच्छा बने रहे।
1: हाँ जी कने इस दे सोगी दिखा का च जेड़ा सै थोड़ा जहा नमक कने मिनरल मिक्सर मिलाई के हाँ जो अपने डंगर बच्छों जो देना चाहिए, जिसने हाँ दे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता जेड़ी से अच्छी रहती।
0: बिल्कुल, तो सारी जानकारी लगातार जारी रहनी है, पर हूँ हाँ फिर ते चलना लोक जानकारी दी तरफ और सुनना एक और प्यारा दे लोक गीत।
1: जी

0: जी तो चंचलो जी हाँ प्यारा दे लोक गीत सुनिया कने इस लोक गीत कने कने हाँ दिखा कार्यक्रम चलिया मौजा ग्राई दिया
1: हाँ जी
0: और इस बीच जेड़े से हाँ लगातार मौजा लगानी और कार्यक्रम दे अंत च एक और सुन देन प्यारा दे लोक गीत
1: जी

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुझंग राइंदियां, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गईं। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को 126 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister JP Nadda will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister JP Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found. Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and asserted that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid the ongoing student protests at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both Houses of Parliament had been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले किसान भाइयों का टाले पर स्वागत है। कने एक बारी पंच जी तुहां दा भी फ्री ते टाले पर स्वागत है।
1: जी चंचलो जी, कार्यक्रम विच तुहाडा ही स्वागत है। और साढ़े जिहड़े कितने भी किसान भाई और बागवान भाई ने, उन्हां जो भी जिहड़ा सा कार्यक्रम च एक बारी फिर ते स्वागत करदे ने। और देखा कार्यक्रम किसान हाँ जिहड़ा सा लेके हाजिर हो गया किसानां वास्ते।
0: हाँ
1: और
0: जी
1: इस विच हाँ जिहड़ी सा फिर ते जिहड़ी सा गलबात अपनी खेतीबाड़ी दे बारे च करनी और अपने पशुधन दे बारे च, और कन्ने कन्ने साढ़े जिहड़े अहां दे किसान भाई छोटे मोटे कम कार करदे रहिंदे है ना, अतिरिक्त आमदनी वास्ते जिहड़े से छोटे मोटे काम कार, जियां मुर्गी पालन है, बकरी पालन है,
0: मछली पालन है,
1: हाँ मछली
0: खुम्ब
1: पालन है।
0: उत्पादन है।
1: जी जी
0: जी
1: जी तो इन्हां सारियां गल्लां दा ही साढ़े किसान भाई जिहड़े से लगातार इन्हां दा जिहड़ा से अहां दा मनोरंजन भी होंदा रहिंदा, कन्ने कन्ने ये गल्लां भी जिहड़ी से साढ़े किसान भाइयों तक पहुँचदी रहिंदी। तां अहां आशा करनी कि इन्हां सारी चीज़ां दा आनंद भी और कन्ने ही जानकारी दा जिहड़ा से लाभ लैंदे ने, है ना।
0: जी कन्हे इसदे सोगी दिखा पंच जी जालू भी हाँ टाले पर आउंदे ने तां सारे ते पहले अपने किसान भाइयां ने सरकारी योजना दे बारे च जरूर गल करदे ना
1: हाँ तो
0: कोई की।
1: तुहां
0: जी जी
1: जी जी आज दसा तुहां कौन दी सरकारी योजना जिहड़ी से अहां दे किसान भाइयों वास्ते लेके आए हो ना।
0: जी तां जिहड़ी सरकारी योजना दे बारे च अज अहां गल करनी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
1: जी,
0: तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिहड़ी है 2015 च शुरू की गई थी। कने इस योजना का जिहड़ा मुख्य उद्देश्य है हर खेत जो पानी पहुंचाना, कने पानी दी एक एक बूंद जो बचाना है
1: जी
0: ताकि घट पानी च ज़्यादा फसल जिहड़ी से हो सके। तो किसान भाइयों, इस योजना के तहत सरकार नहर, ट्यूबवैल, कुएं, कने तालाब बनाने च मदद भी करती है। जिन्हें इलाके च पानी नहीं पुजता तिथु पाइपलाइन बिछाई जाती, पाइपलाइन जड़ी से बिछाई जाती है ना,
1: हाँ जी
0: ताकि अहां दे किसान भाई समय पर खेती जड़े से करी सकन। सरकार खेतों च ड्रिप सिंचाई कने फवारा सिंचाई लगाने पर 40 से 50% तक सब्सिडी भी दिंदी है।
1: हाँ जी
0: ड्रिप सिंचाई करने ते पानी जिहड़ा सा सीधा पौधे दी जड़ा च बूंद बूंद करी के पुजदा, जिसने 40% तक पानी दी बचत हुंदी, कने फसल भी जड़ी से दुगनी हुंदी है।
1: बिल्कुल, जित्थों तक गल हाँ चंचलो जी अपने प्रदेश दी करिए, तां इत्थों हिमाचल प्रदेश विच भी जिहड़े से साढ़े किसान भाई बागवान भाई जिहड़े से इस योजना दा जिहड़े से लाभ ले सकदे हन। और इस वास्ते अहां दे जिहड़े नज़दीकी कृषि विभाग ने उत्थों जाई के जिहड़ा से पूरी जानकारी इस बारे ले सकदे। और साढ़े जिहड़े छोटे किसान सीमांत किसान जिन्हां दी जिहड़ी जमीन है 2 हेक्टेयर दे घट है, सह जिहड़ा सह इन इस जिहड़ी योजना दा फायदा जरूर लैन। और ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली दा स्वीकृत लागत दा 55% तक अनुदान जिहड़ा सह इस विच साढ़े किसान भाइयों जो मिलदा है ना।
0: जी
1: और कन्ने ही जिहड़े अधिकतम क्षेत्र जिन्हां दा ये जिहड़ा क्षेत्रफल है उन्हां दे खेतरां दा 2 हेक्टेयर ते ज़्यादा है, तो तिन्हां जो जिहड़ा सह 45% तक अनुदान दा जिहड़ा सा प्रावधान साड़ी सरकार जिहड़ी से करदी है ना।
0: जी
1: कन्ने कन्ने ही अहां दे जिहड़े पात्र किसानां दी होर गल करिए, तां साढ़े जिहड़े हिमाचल प्रदेश विच किसान जिहड़े कि व्यक्ति ने या संयुक्त मालिक ने या फिर स्वयं सहायता समूह ने या फिर किसान उत्पादक संगठन, ये जिहड़े से आवेदन इस योजना दे तहत कर सकदे। कन्ने ही भूमि दा मालिक होना जरूरी, और साढ़ा आधार खाता होना जरूरी है, बैंक खाता भी जिहड़ा से इस विच लगदा है। कन्ने ही खेत दी भी जानकारी जियां कि खसरा नंबर, जमाबंदी, ये साढ़े जिहड़े खेतरां दे साढ़े जिहड़े कागज हुंदे ने सह भी इस योजना च जिहड़े से जेल्लू अहां आवेदन करदे तां लगदे ने, है ना। कन्ने ही इस क्षेत्र विच घटते पहले जिहड़ी सब्जी सब्सिडी जिन्हां किसान भाइयों नहीं ली हो तिन्हां जो जिहड़े से सब्सिडी जिहड़ी से मिलना जरूरी हुंदी है ना।
0: जी।
1: तां कन्ने कन्ने ही इस विच अहां दे गल करिए ड्रिप सिंचाई दी, तां ड्रिप सिंचाई साढ़े किसान भाई जिहड़े से अपनी सब्जियां च जियां कि टमाटर होई है, शिमला मिर्च है, खीरा है, फलदार पौधे ने, आम है, लीची है, अमरूद है, साइट्रस या फिर पोलियो हाउस विच भी जिहड़ी से ड्रिप सिंचाई जिहड़ी से कामयाब रहिंदी है ना।
0: जी
1: कन्ने ही स्प्रिंकलर दी गल करिए, इस विच फुहारा सिंचाई जिहड़ी
0: फुहारा विधि
1: से
0: जड़ी
1: हुंदी
0: होंगी। हाँ
1: है,
0: जी, हाँ जी,
1: तो इस विच जिहड़े से साढ़े किसान भाई साढ़े जिहड़ी फसलां जियां कि गेहूं है, मक्का है, चारा फसलां, सब्जियां ने जिन्हां दा जिहड़ी ऊंचाई है ज़्यादा हुंदी है, तिथु जिहड़े से स्प्रिंकलर जिहड़ी विधि है इस कन्नै सिंचाई जिहड़ी से आसानी कन्नै करी सकदे न। कुल मिलाई के जड़ा से ये स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई करने चलो हाँ खेती अपनी खेती जो सिंचाई दी करते हैं तो इससे एक ता साड़ा जड़ा समय बचता है और कन्ने कन्ने साड़ा जड़ा पानी दी भी जड़ी से बड़ी ज़्यादा बचत होंगी है। चलो पानी दी बचत होंगी तो अहाँ का जड़े खर्चा भी घट लगता है सिंचाई बच्चे और साढ़े किसानों की जी आमदनी इससे बढ़ती है।
0: हाँ जी, कने फसल भी अच्छी होंगी। तो इसी करके पंच जी अपने किसान भाइयों बोलते रहते कि सरकार हाँ दे किसान भाइयों वास्ते जड़ी भी योजना चलाती है तिना की जानकारी रखा ना, क्योंकि सरकार तो योजना चलाई सकती है, जानकारी रखना दे किसान भाइयों का फर्ज बनता, क्योंकि फायदा भी तिना जो लैना होंगे। तो इस करके किसान भाइयों जो पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फायदा हाँ कि ले सकते
1: जी
0: हैं।
1: तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दे जिहड़ी तुहां पूरी जानकारी रो आवेदन जिहड़े से अपने नज़दीकी दे जिहड़े कृषि विकास

0: साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर उन्नत किसानां कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत महिला किसान अहां कन्ने जुड़ा करदे हन, ओवा करदे हन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना सबसे पहला नां दसा कने कुतू तुहां दे घर न?
1: मैं शिवाली ग्राम पंचायत कटोरा ब्लॉक नगर सूरिया ते।
0: तो शिवाली जी, तुहां खेतीबाड़ी कर दे?
1: हां जी सर।
0: जी दिखा खेतीबाड़ी करने ताईया तुहां वाल जेड़ा सा कितना की जमीन रकबा है?
1: सर जमीन तो साड़े ले 10 कनाल पर जेड़ी 5 कनाल है हाथ सभी ची खेतीबाड़ी करा दे।
0: अच्छा, बाकी जेड़ी 5 कनाल है सर क्या खड़ातर वगैरह कुछ बंजर है?
1: हां जी सर बंजर है, तिस भी चाहां थोड़े मेडिसिन प्लांट लगाने दी कोशिश करा दे कि आजकल जेड़ा सा लेडीज जेड़िया ना सर वो मेडिसिन
0: प्लांट लगा दे। हाँ। तुहां वाल 5 कनाल दा रकबा, तिस विच क्या क्या खेती कर दे तुहां?
1: तिस विच सर हां अजकल लगाया अदरक लगाया की अपने थोड़ी बहुत सब्जियां लगाईया।
0: छली दा बीज कौन लगाया तो हां अपना घर दा बीज है?
1: हां जी साडा घर दा बीज है।
0: अच्छा, देसी चिटियां छलियां बांधे की लाल?
1: चिटियां सर।
0: अच्छा, इस ते कन्ने जियां सब्जियां वगैरह भी लगांदे कुछ?
1: हां जी सर सब्जियां भी लगाने।
0: इस वेले क्या क्या सब्जियां लगियां तुहां दे सवाड़ुआं च?
1: भिंडियां लगियां, बैंगन लग्यो, कन्ने तोरियां वगैरह।
0: हां कन्ने दिखा चलो अपने घरे दी चलो हरी भरी ताजी चलो सब्जी होवे ते जदा इक आनंद जेड़ा सा कुछ होर है। शिफाली जी तुहां दस्सिया की तुहां कुछ जियां एक कोई महिला दा समूह ऐसा मिली के जेड़ा सा औषधीय पौधियां पर भी जेड़ा सा काम करा करदे न?
1: हां जी औषधीय पौधे पर सबसे मतलब कि आजकल जेड़ा सा मिशन धनवंतरी चलिया सारे कांगड़े विच।
0: हां जी
1: इससे जुड़ी के जनानी जेड़ा सा बड़ा भारी महिलाएं जेड़ा काम मिला दा रोजगार मिला दा तिसी ने।
0: अच्छा
1: तिसी ना ते जुड़ी के हल्दी लगाई तो हल्दी दा सागे प्रोडक्ट बना दे जियां साबने दा काम चलिया अजकल सारा कन्ने हां तुलसी लगाइयो जियां मतलब जेड़ी जमीना साड़ी जित्थां खेती नहीं कर तुहां तुलसी लगाइयो तुलसी लगाई के तिसे फिर यहां अर्क निकालना अर्क निकाल के तिस दा साबन तैयार करा दे।
0: जी तो एथु ही तुहां सारा ये काम जी साबन वगैरह एथु ही तैयार कर लेंदे? अर्क कियां निकाल दे तुलसी दा?
1: तुलसी दा अर्क निकालने वास्ते मशीना लगियां धर्मशाला पंचायत पद्धर च भी लगी है मशीन कन्ने फिर एक पत्ता जटियां फतेहपुर ब्लॉक च।
0: अच्छा यानी कि पत्ते पहले तुलसी दे पहले पत्ते इकट्ठे करने हैं ना?
1: हां जी पत्ते इकट्ठे करने या मतलब कि डाल मस में ती दिना दी हरवेस्ट कटिंग कर लेनी जी मतलब पेनी मस में ती कटिंग कर लेते ना
0: फिर ये इंजी सुकाना पोंदे या सिन्ने दा निकलदा अर्क?
1: अर्क निकलदा अर्क जेड़ा से सिन्ने दा निकलना कन्ने अगर जी जेड़े हुन चले कि कन्ने करा दे हां चाय पर काम जी हुंदे तुहाडी ग्रीन टी वगैरह है।
0: हां जी
1: ते तिसी पर काम चले तिसी विच हां कैमोमाइल दे लै दे पौधे।
0: अच्छा
1: एक कैमोमाइल हुंदा फुल हुंदा पीले रंग पंखुड़ियां लैनियां मतलब।
0: अच्छा
1: तुलसी दे पत्ते लैने।
0: अच्छा
1: खुशबू वास्ते लेमन ग्रास होंदी फिर इसे तीन चीजा मिक्स करके एक टी पर कम चलिया पे बनानी हर्बल टी बनानी एक।
0: तो जेड़ा तुहां दा ए समूह है महिला दा इस चे कितनियां महिला जेड़ियां से सोगी मिली की काम करा कर दियां ना?
1: इस टाइम सर मैं 5 लेडीज रखियां मतलब काम कर वास्ते साबन बना दियां जेड़ियां 5 लेडीज ना कन्ने मेरा एक हल्दी दा अचार है।
0: अच्छा
1: भी चल पौना नवंबर महीने तक फिर मिंजो थोड़ी और जरूरत पई जांदी अपने समूह दियां मिंजियां मतलब 4 या 5 लेडीज कर ले के मैं काम शुरू करा दे।
0: अच्छा जेड़ा तुहां साबन बना करदे ने ए ओथू कटोरे ही बनांदे या कुठी अगे पिछे लेके जांदे सी बनाने ताईयां?
1: नहीं मेरे यहां घर ही अपने मेरे हैंड मेकिंग मतलब हाथे ने बनाना है इसकी मशीन नहीं कुछ यूज नहीं करना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जेड़ी केमिकल वाली पानी हां जियां तुलसी अदरक पाया।
0: हां जी
1: शहद पाना अपना हां।
0: अच्छा
1: हल्दी पाई थी फिर नीम दे पत्ते अलग अलग तरीके दे 3 प्रकार दे साबन बनायो हां।
0: अच्छा तो इसी फिर अगे जल तुहां बाजार विच भेजना ता ए कियां क्या करदे फिर कुतू लेके भेजना तुहां ए कुतू बेचना जाय के?
1: सेल जियां मतलब ब्लॉक से साड़ी मीटिंग होंदी ब्लॉक से हर एक इमीरा शॉप होंदी जियां खोल दे हां ते तू ब्लॉक से ले जंदे।
0: हां जी
1: रोटा सोरियां ते तू सेल कर दिंदे।
0: अच्छा तने
1: इस बरी डिमांड आई सी हां जो नूरपुर ब्लॉक से थी आईयो भेजया था हां अपना शॉप सोच के बनाई के।
0: अच्छा तो जियां एक टिक्की मंदलिया साबण इदी दा इदा क्या भाव क्या है साइक का टिक्की दा?
1: एक टिक्की सर 35 रुपए दी 75-80 ग्राम दा वेट होना दिसता।
0: अच्छा
1: हां जी
0: जी बड़ी अच्छी गल्ल देखा कि प्राकृतिक विधि कन्ने पूरी जड़ी बूटियां कन्ने नोने वाला साबण भी जड़ा से तुहां तैयार करा करदे हैं ना?
1: हां जी हां जी
0: जी तो इस ताईया तुहां कुती पहला ट्रेनिंगा वगैरह भी लईयां कुती सिखिया कुतू ए काम तुहां?
1: ए ट्रेनिंग ले यहां, मतलब एक लेडीज थी ब्लॉक नगरोटा सुरें ते नाना पंचायत दे करते थे काम से।
0: हां जी
1: तीने यहां सद्या मतलब अपने कार्य सद्या मैं मिले हां जो भी दिया ट्रेनिंग वहां भी ये काम शुरू करना।
0: अच्छा
1: क्योंकि पहले यहां तुलसी वगैरह नहीं लगाई है पिछले साल था, इस तरीके हार यहां मतलब आर्क वगैरह जी अगर सब कुछ खरीदना पवा ता फिर बड़ा महंगा काम है।
0: हां जी हां जी
1: क्योंकि साबने का बेस होंदा सब खरीदना पौंदा हां जो
0: जी बिल्कुल।
1: कने और मैं सारी महिलाएं जानकारी दी कि जी सारा ब्लॉक नगरोटा सूरियां दा इत्थों फूड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है मतलब सेंटर गवर्नमेंट ते अपॉइंट लोग ने तिथू तो सारे किसान जुड़े हां ते तिथू हां जो चीजां हां मतलब की अपनी जड़ी भी हां उगा दे तिथू सेल आउट करी सकदे पर सारी ऑर्गेनिक तरीके ने होन ता।
0: अच्छा
1: तुलसी भी तीना खरीदी लेनी कैमोमाइल लगा दे अजकल हां
0: हां जी
1: तीना खरीदी लेना हल्दी है सभी तीना खरीदी लेनी हर चीज जड़ी हर्बल चीज होंगी सब तीना खरीदी लेनी मतलब की एक ता हां जो सेल करने दी कोई प्रॉब्लम नहीं देई।
0: हां जी
1: मैंने दूसरा है कि जिन्हें ने जुड़ी के हां जो है कि मतलब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है तीना खुद ही मार्केटिंग करनी उन साबन है हाड़ा था सेट साबन जरा से मैं टेस्टिंग वास्ते दे थे तीना हाड़े हो ये चार पांच दिन निकले हो साबने मतलब टेस्टिंग हो था साबन हाड़ा पे ही ऑर्गेनिक है कि कुछ हाँ केमिकल के नहीं मिक्स किता।
0: हाँ जी हाँ जी
1: जरा सारा अदर स्टेटा भी जाई के सेल होना मतलब से हानी सेल करना से सीधे खुद एफ बी वाले सेल करना मतलब जो फूड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है ब्लॉक नगरोटा सूरियां दे तीना सेल करना।
0: अच्छा यानी कि इसने तो हाँ जो आसानी हुई यानी तो हाँ वाल जितना भी उत्पाद होगा तो हाँ तीना ये देना आगे जड़ा सा तीना बेचना है
1: तीना सेल करना आगे तीना बेचना आगे जाके लोकल मार्केट है मतलब जिया हाँ लोकल सेल करा दे सा मतलब जिया डिमांड आई जाती ता कर तैयार करी दे जिया जिस चाहे तो होगा साबन आज बोले तो सा ता कल दिन सवेरे तैयार करके दे देना।
0: अच्छा
1: हाँ जी अपने लोकल तीना सेल करा दे
0: जी जिया औषधि पौधे चाहिए तो दसिया तुलसी है इससे सोगी और कौन कौन पौधे लगाए हो ना
1: मतलब तुलसी है अश्वगंधा है सर्पगंधा है।
0: अच्छा अच्छा
1: अश्वगंधा सर्पगंधा इन्हां दी जड़ां जड़ियां ना सह फेल होंदियां।
0: अच्छा
1: हां जी इन्हां दी जड़ां कटनियां जलू मतलब पत्ते भी हो जांदे पर ज्यादा जड़ी कीमत है जड़ां दी मिलदी इन्हां दी दी।
0: अच्छा
1: बाकी सारा ये काम चले औषधि पौधियां पर चल लिया मैं तो बोलदी कि जनानी है जड़ा से घर बैठी के काम है औषधि पौधियां दा करना।
0: बिल्कुल हां जी
1: कने इस विच पंचायत जड़ी है ब्लॉक जड़े से बड़ी हेल्प करा दे।
0: अच्छा शिफाली जी इससे बाद जियां गल करदे ने इससे सोगी जियां औषधि पौधे तो हां जड़े से लगा करदे ने सोगी जियां कुछ और फलाने पौधे भी लगायो जियां बागवानी दी गल करिए दा
1: सर बागवानी जेडी ये सर बड़ी ज्यादा नहीं अपने यहाँ घरे तक की जी मतलब हर दो दो तीन तीन पेड़ सब कैसी दे अमरूद संतरे अंब।
0: अच्छा जी यहाँ कुनी औषधि पौधे अगर लगाने होन या तो हाँ ते लेने होन ता तेना जो पौध कुतु मिल है कुतु संपर्क करन जेडे तो हाँ जो सोना कर देने से वेले
1: सर मतलब कि हर ब्लॉक से जेडी से नर्सरी दिती हो मतलब कि पूरे ब्लॉक से दो दो नर्सरियां ना।
0: हाँ जी
1: जेडे औषधि प्लांट ने सती नहीं उगाने मतलब कि हर कोई नहीं उगाई सकदा मतलब बेंडर बंदे क्योंकि एक बेंडर टाइप होंदा।
0: हाँ जी
1: सती नहीं सेल आउट करनी जेडे नर्सरी लगाने थी ना।
0: यानी कि अगर कुसी यो औषधि पौधे अगर चाहिए हो तो सर अपने ब्लॉक च संपर्क करन की दसा वे हाड़े ब्लॉक च औषधि पौधे कुतु मिल सकदे ना। शिफाली जी इसके बाद तो हाँ जड़ा सह आहां दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है जड़े की नौकरी पिछे तां घूमा कर दे कने देखा नौकरियां नहीं भी मिला कर दी तीने तो हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे।
1: हां जी तीने तो मैं संदेश देना चाहूंगी कि तू हां औषधि पौधे लगाओ।
0: हां जी
1: कने तीने सेल करा तीने अपने तरीके ने आज उन ता मतलब शैम्पू खुद बिल्कुल प्राकृतिक तरीके ने शैम्पू बनाना भी दस्सा दे अचार पाना भी दस्सा दे हर चीज दस्सा दे एक बंदे काम करने दा पता होना चाहिए कि मैं ये काम करना मैं लाइन लेनी है हुण मैं काम करा तो मैं कल्ली नहीं रोजगार ला दी मैं अपने ने पांच और भी जोड़ियां कने शायद हां कुछ और काम करना तो इससे पांच और भी तक मतलब इससे जरा से घर बैठी जेडियां बेरोजगार लेडीज ने तीने भी काम जाने की जरूरत भी नहीं कि हां जो कुछ मेहनत करना हां बाहर जाना कमाना अपने घर बैठे के आराम में काम करना अरे एक जगह इकट्ठे होके काम करना सा।
0: जी शिफाली जी ग्रां कटोरा नगोटा सूरियां दे तो हां आहा कने आकाशवाणी धर्मशाला दे टियाले पर इत्थों तो हां जुड़े अपना कीमती समय तो हां आहा जो दित्ता तो हां दा बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो चंचलो जी दिखा बड़ी अच्छी जानकारी हाँ सुनी कि साढ़े जेडे उन्नत किसान शिवाली होर बड़ी अच्छी जानकारी दी और तिना जेड़ा से औषधि पौधे की बड़ी तगड़ी जड़ी से खेतीबाड़ी करा देने इन्हें दिन है ना।
3: हाँ जी
2: और अहाँ जो भी चाहिदा कि अहाँ अजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम का लाभ लेंदे हुए अहाँ भी जेड़े से औषधि पौधे जेड़े से इन्हें दिन लगाना चाहिए।
3: जी जी
2: तो इसके बाद अहाँ फिर चलना लोग जानकारी की तरफ और सुनना एक और प्यार दिया लोकगीत जी।

0: जी तक किसान साथी इसी प्यारे दे लोक गीत कने तुहानू दस दिए कि इस कार्यक्रम जो तुहानू तक पहुँचाने वास्ते तकनीकी सहयोग दिता विकास पठानी और कने प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हुण अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
1: कने चंचलो जो दया अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित व कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा का आरोप, पेपर लीक मामले पर राजनीति कर रही कांग्रेस, सड़क पर हिंसा व टकराव का माहौल बनाकर लोकतंत्र को किया शर्मसार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, पंचायत जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी, विकास कार्यों में पंचायतों की अहम भूमिका। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, भूस्खलन से 136 सड़क मार्ग अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 6.5% की कमी आने के बावजूद सरकार सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने व दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत किसी भी सड़क परियोजना के 5 महत्वपूर्ण चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में दुर्गम भूभाग, तीखे मोड़ और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करती हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा एक गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सड़क नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों को शीघ्र व कठोर दंड दिलाने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। बिंदल ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी, ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके। बिंदल ने कांग्रेस पर युवाओं के भविष्य पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस संसद में चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सड़क पर हिंसा व टकराव का माहौल बनाकर लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं।
1: नीट के पेपर लीक को लेकर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर गंभीर है। पेपर लीक होने के तुरंत बाद सीबीआई ने अपना काम शुरू किया, दोषियों को जेल में डाला और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को सजा दी जाए आंदोलन छात्रों का रहा, उसके प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील रही, परंतु राजनीतिक दलों ने राजनीतिक साधन के लिए इस आंदोलन को हाई किया।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध पर स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुक्खू सरकार का रवैया इसके बिल्कुल विपरीत रहा है और मुख्यमंत्री दोषियों को बचा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि भाजपा देश के युवाओं व छात्रों के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है और अपनी नाकामियों व विफलताओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सत्ता के बल पर युवाओं, छात्रों और विपक्षी नेताओं की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नीट व CBSE के पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आंदोलनरत छात्रों की मांगों को मानना चाहिए। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पंचायत जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी हैं और गांव के विकास में पंचायतों की अहम भूमिका है। ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों के सम्मान में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुकेश अग्निहोत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से जनता को साथ लेकर पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और जनकल्याण से जुड़े सभी क्षेत्रों में विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। इस दौरान सभी नव निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में विकास को नए आयाम देने का संकल्प भी लिया। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिससे कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के चलते कई स्थानों पर हुए भूस्खलन से 136 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं और 64 ट्रांसफार्मर व 375 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी ठप हैं। उधर कांगड़ा जिला की बोह घाटी के गढ़गून और स्पेड़ा गांव में बीते दिनों हुई बादल फटने की घटना से 25 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि कई अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया से दूरभाष के माध्यम से आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से भी फोन पर बात की।

0: और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उधर चंबा जिला में साच पास मार्ग सतरुंडी नाला, रानीकोट व कार्थ नाला में बादल फटने से हुई क्षति के कारण सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। इसके अलावा बट्टी दी हट्टी, दुर्गहट्टी, धरवाला व दुनाली मार्ग पर लगातार पत्थर गिरने व भूस्खलन के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर इसे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि राज्य सरकार सच बोलने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, जबकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करीब 2.5 साल पहले बनकर तैयार हुए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का भवन आज भी बंद पड़ा है और बच्चे अस्थायी जगह पर चल रहे कॉलेज में पढ़ने को मजबूर हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पास बन रही पीजी बिल्डिंग पर सवाल उठाते हुए इसके लिए ओपन टेंडर करने की सरकार से मांग की है। सिरमौर जिले की संगड़ा पंचायत के रेणुका बांध डूब क्षेत्र से जुड़े लोगों ने विकास कार्यों को अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई है। पंचायत के प्रधान तपेंद्र सिंह राणा ने पंचायत में 2 वार्ड रेणुका बांध डूब क्षेत्र के दायरे में आ रहे हैं और वहां सेक्शन 4 लागू होने के कारण कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा से मुलाकात कर लंबित कार्यों को पूरा करवाने का आग्रह किया है।
1: हमारी जो प्रमुख समस्याएं थी, जिन पर हमने आज डीसी मैडम को ज्ञापन भी सौंपे, मुख्य रूप से जो हमारा मुद्दा था, बांध प्रभावित हमारा क्षेत्र है उसमें से हमारे 2 वार्ड आते हैं, मेंटेनेंस वर्क उसमें होने थे, उसमें जो दिक्कतें आ रही है, सेक्शन 4 लगा होता है जैसे बांध प्रभावित क्षेत्र है उसमें हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सके, इसके लिए डीएम की परमिशन चाहिए होती है। मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित व कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा का आरोप, पेपर लीक मामले पर राजनीति कर रही कांग्रेस, सड़क पर हिंसा व टकराव का माहौल बनाकर लोकतंत्र को किया शर्मसार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, पंचायत जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी, विकास कार्यों में पंचायतों की अहम भूमिका। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, भूस्खलन से 136 सड़क मार्ग अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बसंतपुर स्थित सुन्नी, जिला शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों हेतु साक्षात्कार 13 अगस्त 2026 को बाल विकास परियोजना सुन्नी के कार्यालय में

0: सुबह 11 बजे उप मंडलाधिकारी सुनी की अध्यक्षता में लिए जाएंगे। इन पदों हेतु पात्रता की शर्तें इस प्रकार से हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही योग्य हैं। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी का नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे परिवारों की सूची में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इससे संबंधित प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10-2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का हिमाचल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। एक बार फिर से सुन लीजिए। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है और साक्षात्कार 13 अगस्त 2026 को बाल विकास परियोजना सुन्नी के कार्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी।

0: लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देशभर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी ये स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और DGA से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं तलत अजीज और दिलराज कौर की मिलीजुली आवाजों में इस गजल के साथ।

अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज और दिलराज कौर की मिलीजुली आवाज़ों में ये गज़ल। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं

कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे लकी अली का गाया ये गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पूर्व और पश्चिम फिल्म से ये देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। बोल है इंदिवर के, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं आक्रमण फिल्म से ये देशभक्ति गीत किशोर कुमार व साथियों का गाया हुआ।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे। अपने
1: नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
4: एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
5: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर

0: प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा

0: कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक

0: जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग। द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री JP नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: Earlier, Prime Minister Narendra Modi announced that the center will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in NEET paper leaks and asserting that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition's protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak.

0: Parliament over neat paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicosor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin in Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in the first T20 cricket match against Zimbabwe. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिनेत्री कियारा आडवाणी पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत।

0: जसरीन रॉयल और बीपरा की मिलीजुली आवाजों में अभी आप सुन रहे थे शेर शाह फिल्म से ये गीत। कियारा आडवाणी का वास्तविक नाम आलिया आडवाणी है। उनका जन्म 31 जुलाई 1991 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद जय हिंद कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई पूरी की।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
0: कियारा ने वर्ष 2014 में फिल्म फगली से अपने अभिनय की करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अधिक सफल नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद वर्ष 2016 में आई सुपरहिट फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से साक्षी धोनी की भूमिका निभाकर उन्हें देश भर में पहचान मिली। तो आइए सुनते हैं पलक मच्छल का गाया हुआ गीत एमएस धोनी फिल्म से।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: इसके बाद कियारा ने कबीर सिंह, गुड न्यूज़, शेरशाह, भूल भुलैया 2, जुग जुग जियो और सत्य प्रेम की कथा जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। उनकी सहज अदाकारी, आकर्षक व्यक्तित्व और विविध भूमिकाओं ने उन्हें हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं कबीर सिंह फिल्म से ये गीत। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कियारा आडवाणी ने वर्ष 2023 में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा से विवाह किया। आज वे अपने पारिवारिक जीवन और अभिनय करियर दोनों में संतुलन बनाए हुए हैं।

दिनों कियारा आडवाणी अपनी आगामी फिल्मों टॉक्सिक और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में है। हाल के दिनों में ही उनकी फिल्म टॉक्सिक के गीत तवाही ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। कियारा आडवाणी की सफलता हमें ये संदेश देती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की इच्छा इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा देती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत अभिनेत्री कियारा आडवाणी के ऊपर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रंगे गजल। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बाजार फिल्म के इस गजल के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

रंगे गजल ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुनते हैं गुलाम अली को।

अभी आप सुन रहे थे बाजार फिल्म से ये गजल लता मंगेशकर की गाई हुई। रात्रि के 10 बजे हैं, आप आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रीय प्रसारण दिवस रिले किया जाएगा।

0: चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का

0: बयान। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत अब से कुछ ही देर में ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाई के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज। अभिषेक मुखोपाध्याय।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कौशल्या देवी का गाया ये लोकगीत कार्यक्रम में। अब हम शामिल कर रहे हैं सुरेश वर्मा का गाया ये लोकगीत।

मनसा पंडित के गाए इसी लोकगीत के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:23 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति अब्दुल्ला फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

अभिमान। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आइए अब फिर से सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी की रचना को। बुढ़ा मिल गया इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहां अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खास
0: रात कली यानी तुम
1: और यहाँ

चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत अभी आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त मन कोटिया के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ।

0: ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। किशोर कुमार की आवाज में बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। अमर प्रेम फिल्म से ये गीत था। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से। पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विषय पर अपनी बात। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
3: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: While India have opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony, as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75kg semifinals after receiving a bye. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।
2: आपकी फरमाइश।